आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों

0: ये एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृवंदना से।

समूह स्वर में बाल मुकुंद मिश्रा की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए कणिका बैनर्जी के स्वर में संत सूरदास की ये रचना।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में मधुकर राजस्थानी की रचना अभी आप सुन रहे थे। संगीत खयाम का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुने जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री उमेश द्विवेदी का है।
1: महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण से मिलने गए। अर्जुन से पहले दुर्योधन पहुंचे थे, सो कृष्ण के सिरहाने पलंग पर बैठ गए। अर्जुन बाद में पहुंचे और कृष्ण के पैरों के पास बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान कृष्ण की नींद जैसे ही खुली, उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा, अरे अर्जुन, कैसे आए हो? इससे पहले अर्जुन उत्तर देते दुर्योधन बोला, मैं तो अर्जुन से भी पहले आया था और आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृष्ण ने दोनों से आने का अभिप्राय पूछा। दोनों ने ही युद्ध में कृष्ण से सहायता लेने की बात कही। कृष्ण ने कहा, ठीक है, परंतु ये भी मैं पहले से स्पष्ट कर दूं कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा और दूसरी ओर मेरी वैष्णवी सेना। अब इनमें से आप दोनों जिसे चुनना है चुन लें। पहले चूंकि अर्जुन को मैंने देखा है, अतः अर्जुन ही पहले बताए कि उसे क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आपका सानिध्य ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। दुर्योधन

0: मन ही मन कह रहा था कि देखो पहले मैं आया और कृष्ण पहले अर्जुन से मांगने कह रहे हैं। खैर, अर्जुन का उत्तर सुनकर वो मन में तो बड़ा प्रसन्न हुआ, पर प्रकट में बोला, ठीक है, जब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया है तो मैं वैष्णवी सेना से ही संतोष कर लेता हूं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अंततः जीत भी पांडवों की हुई। इस कथा के पीछे बहुत बड़ी शिक्षा है, वो ये कि जहां परमात्मा स्वयं है वहां कभी पराजय हो ही नहीं सकती। जहां कृष्ण है न वहां कभी पराजय है और न ही कोई अभाव। भगवद गीता में इसीलिए अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, और आश्वस्त भी किया है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पित कर केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रित हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कृष्ण ने अपने इन वचनों को प्रमाणित भी कई अवसरों पर किया है। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग लें, धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी को जुए में हारकर उसके पांच पति असहाय बैठे थे, भीष्म जैसा महारथियों ने मौन धारण कर रखा था, तब दुशासन के द्वारा द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का प्रयास कृष्ण ने निष्फल कर दिया था। द्रौपदी की चीर इतनी लंबी होती गई कि दुशासन थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर सका। अश्वत्थामा ने भी जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु की उसमें भी रक्षा की जो परीक्षित हुआ। मीरा को मारने के लिए उसके पति ने जब विष का प्याला भेजा तब उस प्राणघातक विष का भी कोई असर नहीं हुआ। परंतु इन सबके पीछे रहस्य क्या था? वही जिस ओर कृष्ण ने गीता में इंगित किया है, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। मन में ये बात पूर्ण रूप से ठान लेनी है कि इस संसार में किसी का कल्याण करने की सामर्थ्य उस परमात्मा की ही है जो इस शरीर के माध्यम से सबके भीतर सांस ले रहा है, जिसकी कृपा से हम जीवित हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। वो इस शरीर के माध्यम से भोजन करता है, पचाता है और शरीर को पुष्ट भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से इसीलिए कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, समस्त प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि हूं, प्राणापानो समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम, जो शरीर द्वारा ग्रहण किए गए अन्न को पचाती है और शरीर को पुष्ट करती है, फिर शरीर का स्वामी कौन है? वही न जो इस शरीर को धारण किए हुए है। फिर सामर्थ्य किसकी हुई? उसी की न जिससे यह शरीर जीवित है, अन्यथा उसकी उपस्थिति के बिना तो यह शरीर मिट्टी ही है जो 24 घंटे भी नहीं ठहरता, बदबू करने लगता है। रामायण में भी यही बात तुलसीदास जी ने सांकेतिक रूप से कही है, जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा कर ही सब कोई, अर्थात राम रूप परमात्मा ही सबके शरीर का स्वामी है, जब उसकी कृपा है तो संसार में फिर दुर्लभ ही क्या है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे आलेख श्री उमेश द्विवेदी का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान
2: एपिसोड नंबर 183।

वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। मुख्य स्वर अनुराधा और श्रीकांत पारगांवकर के थे और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी रायपुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए सुने कृषि चर्चा। विषय है खरीफ फसल धान में नील हरित काई का उपयोग और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती गोपिका गबेल।
1: किसान भाई हो, राम राम। आप मन जानत हो छत्तीसगढ़ है हमारे धान के कटोरा है और खरीफ सीजन आगे है तो धान के खेती में यूरिया के उपयोग बहुत ज्यादा होते। किसान भाई मन यूरिया के उपयोग ला 1/4 घटा के ओकर जगह में नील हरित काई के अगर उपयोग करी तो लागत में बचत होही और हमार जमीन के स्वास्थ्य हर सुधर ही। तो आज मैं आप मन ल बतात हूँ कि नील हरित काई काला कथे। एहर एक नीला हरा रंग के काई होते जेहर धान के खेत में पानी भरे वाले खेत में कर उपयोग होते। हवा से सीधा नाइट्रोजन ल खींच के पौधा ल पहुँचाते। एकर से कम 55 से 60 किलो यूरिया के बराबर नाइट्रोजन मिलते पौधा मन ला। नील हरित काई है सड़ते तो 800 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कार्बनिक पदार्थ यानी जैविक खाद भी उपलब्ध कराते खेत ल। एकर उपयोग से धान के खेत में 10 से 15% तक के वृद्धि होते। नील हरित काई के उत्पादन करे बर अपन खेत में ऐसे जगह में जहाँ पे दिन भर धूप रहते और पानी के स्रोत है वहाँ जरूरत के अनुसार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा

2 मीटर लंबा और 9 इंच गहरा पक्का गड्ढा तैयार करते। जे किसान मन करा अगर धन के कमी है तो पक्का गड्ढा के जगह कच्चा गड्ढा तैयार करके ओमा पॉलीथीन बिछा के पानी रोक के नील हरित काई के उत्पादन कर सकते हैं। तो जो गड्ढा हम तैयार करे हैं 2 गड्ढा के बीच में 2 फीट के जगह छोड़ देना चाहिए ताकि बीच में जाके देख रेख करे और नील हरित काई निकाले में आसानी हो। अब हर एक गड्ढा में 25 से 30 किलो अच्छा उपजाऊ डोरसा या कन्हार मिट्टी पहली बिछा देवो। मिट्टी बिछाए के पहली ओमा 200 से 250 ग्राम बुझा

0: भर देना है। सुपर फास्फेट और मिट्टी ला अच्छे से मताई कर देना है। मताई करे के बाद कुछ समय छोड़ देवा ओला। जब मिट्टी हर बैठ जाही और ऊपर के पानी हर जब साफ झलके के लागी, तब ओमे 100 ग्राम नील हरित काई के कल्चर 1 वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर से छिड़क दो। ये जो करे के बाद है, करीब प्रतिदिनों में कम से कम 3 से 4 इंच तक पानी भरे रहे बर लागी। अगर पानी सुखात है तो पानी भर दे ऊपर ले। 10 से 15 दिन में नील हरित काई के जो मिट्टी के सतह है वह हल्का हरा दिखे के चालू होही और ओमा काई के मोटा परत बने के चालू होही। ये जो परत है धीरे धीरे 10-15 दिन में पानी के ऊपर आही। दिन में हर ऊपर तैरते और रात में नीचे बैठ जाते। तो जो मिट्टी के परत लेके जो काई ऊपर तैरत रहते ओला छन्नी के द्वारा या झारा में करके अलग कर लो और ओला सुखा के पाउडर बना के ओकर उपयोग खेत में करे बर इल मदर कल्चर कथे। खेत में उपयोग कर सकत हो। यही मदर कल्चर के उपयोग और दूसरा टाका में भी उत्पादन करे बर आप मन कर सकत हो। तो इस तरह से 15 दिन में एक फसल नील हरित काई के निकल जाही। फिर वो मा और दोबारा पानी भर दो, थोड़ा सुपर फास्फेट छिड़क के फिर छोड़ दो। फिर अगला फसल है 10 दिन में आ जाही। तीसरी बार में वो जो टांका है ओकर पूरा पानी ला सुखा दो। जो मिट्टी के पपड़ी बन के निकल ही वो पपड़ी ला पूरा पाउडर बना स्टोर करके धर लो। ओहर मिट्टी वाला नील हरित काई के कल्चर कहलाही। तो जो कूट के मिट्टी वाला नील हरित काई है एकर 4 किलो के पैकेट बना के रख सकत हो या बोरा में भर के रख सकत हो। लंबा समय तक रखे ले भी एकर गुणवत्ता हर खराब नहीं हुए। नील हरित काई उगाए बर जतका ज्यादा तेज धूप रही और जतकी गर्मी रही उतकी जल्दी नील हरित काई के बढ़वार हुई। तो अभी जो समय चला थे गर्मी के इमा अगर आप मन टांका बना के नील हरित काई के उत्पादन करू तो बहुत तेजी से 10 से 15 दिन में एक फसल काई के निकल आई। तो इस तरह से 2 महीना में कम 4 फसल आप मन निकाल के बोरा में भर के स्टोर करके रख सकत हो। और जैसे ही धान के सीजन आई रोपाई या बियासी के बाद खेत में 3-4 इंच पानी जो भरे रहते वही समय 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो पाउडर है नील हरित काई के कल्चर ओकर खेत में छिड़काव कर दो और पानी ला रोक के रखा कुछ दिन। तो उतका दिन में 10 से 15 दिन में पानी रोके रही तो वो काई हर खेत में बढ़वार होही और हवा से नाइट्रोजन खींच के धान के पौधा मन ला दही। नील हरित काई खेत में उपयोग करे के यही सावधानी है कि पानी ला रोक के रखना है, नहीं तो वो दूसर के खेत में कल्चर हर चल दी। और दूसरा ये सावधानी है कि अगर उत्पादन करत हो तो हरी काई भी हो सकत है वहाँ आ जाए गड्ढा में। तो किसान भाई हो अभी आप मन जानो कि नील हरित काई के उत्पादन कैसे करना चाहिए और धान के खेत में कैसे उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।
1: कृषि चर्चा में खरीफ फसल धान में नील हरित काई का उपयोग, इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती गोपिका गबेल। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स। दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा हुसैन बख्श का गाया राग राजेश्वरी में ख्याल। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें आप सुनेंगे नई AI तकनीक और स्थानीय बोलियों के समावेश से लैस डायल 112 की नई और संवेदनशील पहल पर पुलिस तकनीकी सेवा के ADG अपर महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता से बातचीत और NIT रायपुर में AI के मायाजाल पर होने वाली इंटरनेशनल वर्कशॉप को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति चंद्राकर से होगी विशेष बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे विश्व भूख दिवस पर भूख कुपोषण और सही पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यूनिसेफ रायपुर की न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपर्णा देशपांडे से बातचीत। साथ ही होंगे गीत संगीत, प्रस्तुत करता होंगी शीतल अटकड़े।

0: बच्चों के कार्यक्रम बाल वाटिका में सुबह 8:30 पर बेरा के बाद का विषय होगा पढ़ाई संग खेलकूद जरूरी है और होंगी पर्यावरण चेतना पर आधारित बाल कविताएं कवि श्री बिहारी राम साहू। साथ ही होंगे क्रम रोचक जानकारी दुनिया के और बाल गीत। सुबह 9:00 प्रगति के सोपान में सुनिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एम्स रायपुर के उप चिकित्सा अधिकारी और नोडल ऑफिसर डॉक्टर रमेश चंद्राकर से बातचीत। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने का समय होगा दिन के 11:05 पर। दोपहर 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 5:00। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा आत्मसम्मान से जीना और हास्य वार्ता। गुलगुले में आप सुनेंगे दीप्ति श्रीवास्तव को। साथ ही होंगे कुछ टिप्स। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:10 पर आज अपन गोट का विषय होगा जिम्मेदारी संग बूता करन और सुनिएगा हेलो मितान और अंतस क्यारो। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा जल संरक्षण कराओ भविष्य बचावव और किसान वाणी में आज की सलाह का विषय होगा टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले। ये फौजी का घर है ये नाटक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। लेखक और निर्देशक होंगे श्री विनोद कुमार। रात 10:30 पर समय होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत का और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर। सुबह 10:30 पर दोपहर 1:05 पर दोपहर 2:00 दोपहर 2:30 पर शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं पहले संस्कृत फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यते। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15 राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3 राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्च

0: उच्चम औपचारिक सम्मानम वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोयम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें आगामी ओलंपिक

0: अष्टमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है शीतल अटकड़े।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और छत्तीसगढ़ की माटी की महक के साथ आप सभी को जय जोहार। दोस्तों, कभी कभी दिन सिर्फ दिन नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं जो दिल में धीरे धीरे बस जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते और कुछ यादें वजह नहीं पूछती, बस अपने आप बन जाती हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा। बिल्कुल चाय की पहली घूंट की तरह, जो हर बार वही स्वाद देती है लेकिन हर बार थोड़ा अलग सा सुकून छोड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। और आज इस मुलाकात में कुछ ऐसा एहसास है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में महसूस होता है। आज के सुबह में एक अजीब सा ठहराव है। आप रेडियो के उस पार हैं और मैं इस पार, लेकिन हमारे बीच का ये जो फासला है ना, वो आपकी मोहब्बत ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। कहते हैं ना कि वक्त के साथ चेहरे धुंधले हो जाते हैं, सुबह की आदतें बदल जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए, जो आवाज एक बार सीधे रूह से जुड़ जाए वो उम्र भर की गूंज बन जाती है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है

कि मेरी आवाज आपके जहन में हमेशा उस सुकून की तरह ठहरी रहे जिसे आप चाहकर भी कभी भूल ना पाए। तो आज इससे पहले कि हम इस दिन की कोई और शुरुआत करें, मैं अपनी तरफ से एक गीत मेरे प्यारे श्रोताओं आपके नाम करना चाहती हूँ। एक ऐसा गीत जो हमारे और आपके इस रिश्ते की, इस खूबसूरत सफर की कहानी कहता है। बिना कुछ कहे पेश है आपके रेडियो सेट पर ये प्यारा सा गीत।

0: द्वारा रोड डेली बाधा रायपुर
1: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। और अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का। जानते हैं 28 मई से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं और आज के दिन की विशेष बातें। आज ही के दिन 1883 में जन्म हुआ विनायक दामोदर सावरकर का। वीर सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि और क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने अपने लेखन और विचारों से स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। वहीं दूसरी ओर 1908 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे मशहूर जासूस जेम्स बॉन्ड के रचयिता इयान फ्लेमिंग का भी जन्म हुआ था, जिनकी कहानियां आज भी रोमांच और रहस्य का दूसरा नाम है। दोस्तों, आज मनाया जाता है विश्व भूख दिवस, जो हमें भूख और कुपोषण के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देता है। साथ ही महिलाओं को उनकी सेहत और हकों के प्रति जागरूक बनाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य एवं अधिकार कार्य दिवस भी मनाया जाता है। और आज के दिन मदर इंडिया अंदाज और अनोखी अदा जैसी कालजयी फिल्मों के जरिए समाज की सच्चाई और महिला संघर्ष को पर्दे पर उतारने वाले दिग्गज निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब को भी हमारा विनम्र नमन। तो दोस्तों, ये थी 28 मई की कुछ खास ऐतिहासिक झलकियां। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि गुजरे हुए कल की हकीकत क्या थी, लेकिन आज इस पल में जो सुकून है वो आप श्रोताओं के इस प्यारे से साथ की वजह से है। दोस्तों, तारीखें बदल जाती हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन आपके साथ बना ये अनदेखा सा रिश्ता मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब के सच हो जाने जैसा है। इस सफर में, मेरी इस छोटी सी दुनिया में आपकी अहमियत क्या है, शायद ये गीत मेरी तरफ से उन अनकहे एहसासों को आप तक पहुंचा दे। पेश है इन्हीं भावनाओं को दिल में समेटते हुए ये प्यारा सा गीत सिर्फ आपके लिए।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरु।

0: श्रोताओं, संकट के समय जो एक नंबर सबसे पहले हमारी उम्मीद बनता है वो है डायल 112। और अब छत्तीसगढ़ में ये आपातकालीन सेवा एक नए हाईटेक और बेहद संवेदनशील स्वरूप में सामने आ रही है। कॉल करते ही आपकी लोकेशन अपने आप ट्रेस हो जाएगी। 8 अलग अलग आपातकालीन सेवाओं का एक ही नंबर पर मिलना, और सबसे खास बात, अब सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी अपनी छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय बोलियों में भी शिकायतें सुनी जाएगी। इसी पूरी व्यवस्था और AI आधारित तकनीक और 33 जिलों तक हुए बड़े विस्तार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तकनीकी सेवा के ADG श्री प्रदीप गुप्ता जी। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू
0: सर। डायल 112 में अब छत्तीसगढ़ी, हल्बी और गोंडी जैसी स्थानीय बोलियों को भी शामिल किया गया है, इससे दूरस्थ इलाकों के लोगों को क्या सबसे बड़ा फायदा मिलेगा?
1: जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर हमारा डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जा सकती है, और वहां पर कॉलर को सुविधा ज्यादा है अपनी खुद की भाषा में बात करने के लिए, तो ऐसे में वो अपनी खुद की भाषा में भी शिकायत और सहायता मांग सकता है, और हमारा प्रयास रहेगा कि उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति उससे वार्तालाप करे और उसकी पूरी बात समझ के तदनुसार हम वहाँ पर उसको सहायता पहुँचाएं।
0: बिल्कुल सर, यानी तकनीक अब सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि लोगों की भाषा और भावनाओं को भी समझने वाली बन रही है।
1: जी,
0: लेकिन सर इमरजेंसी के समय अक्सर लोग अपनी सही लोकेशन नहीं बता पाते, तो नई ऑटो लोकेशन ट्रेसिंग तकनीक और 400 नए हाईटेक वाहनों से रिस्पांस सिस्टम में क्या बड़ा बदलाव आएगा?
1: देखिए, डायल 112 की जो सुविधा है पूरे देश में और वैसे ही छत्तीसगढ़ में है, वो सुविधा जो है वो उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस आती है, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस में जो कॉलर है वो उस कॉलर की लोकेशन अपने आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 112 को उपलब्ध करा देते हैं, तो इनके लोकेशन के आने से हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको कहाँ पहुंचना है, और उस लोकेशन को फर्दर रिफाइन करने के लिए उनसे हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में पुलिस पर्सनल है वो फर्दर उनसे बात कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल सर। सिर्फ ये बताइए कि डायल 112 के जरिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ गई हैं, किसी गंभीर स्थिति में अलग अलग विभागों के बीच तालमेल किस तरह काम करेगा?
1: देखिए, 112 केवल पुलिस की अकेली सेवा नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सेवा है, तो किसी को भी अगर पुलिस, मेडिकल या फायर के कोई

0: आपदा में एक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो 112 डायल करके हमारे कमांड सेंटर तक पहुंच सकता है। कमांड सेंटर पे उसकी पूरी बात नोट की जाएगी और पुलिस का अगर सेवा चाहिए तो हम उसको खुद डिस्पैच कर देंगे। अगर उसको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो हम उसके इवेंट को तत्काल जो 108 का कमांड सेंटर है उनको अग्रेषित करते हैं जिससे वो लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, और अगर कोई फायर का इंसिडेंट है तो हम उसको फायर सर्विसेज को तुरंत नोटिफाई कराते हैं तो वो लोग आते हैं। इसके अलावा और भी वेमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन की भी जरूरत अगर परिलक्षित होती है तो उन हेल्पलाइंस में बैठे हुए जो कमांड सेंटर के पर्सनल हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है तुरंत, चाहे वो रेल मदद की हो, वेमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, आपदा प्रबंधन हो, तो ये सब का इंटीग्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि अगर उसको मल्टीपल कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे हर चीज के लिए।
1: और अब आखिर में ये बताइए कि 16 जिलों से शुरू हुई ये सेवा अब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है, तो आने वाले समय में डायल 112 को लेकर आपका क्या विजन है और आम नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: आने वाले दिनों में डायल 112 की सेवा यूनिवर्सल हो जाए ये उद्देश्य रहेगा, और जैसे जैसे हमारे वनाच्छादित क्षेत्र जो है उनमें विकास पहुंचेगा, उनमें से जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम चाहेंगे कि डायल 112 वहां पर और ज्यादा विस्तार में जाए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उस रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हम जितने अधिकाधिक पर्सनल को इसमें लगाना चाहेंगे और अधिकाधिक इसमें इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय करना चाहेंगे, तो ये सब संसाधन से जुड़ी बातें हैं और भविष्य में हम लोग इन सब में बढ़त करना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो आईटी सॉल्यूशन है वो लगभग परिपूर्ण है, तो अब जो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलना है वो इन संसाधनों के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से मिलेगा। हमारा संदेश यही है कि डायल 112 की जो सेवा है उसका उपयोग करें, कहीं पर भी आपको यदि स्वयं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है या आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा नागरिक संकटापन्न है तो आप 112 को जरूर कॉल करें और उसको संपूर्ण जानकारी दें। यदि आप लोकेशन को जितना ज्यादा बारीकी से प्रिसाइज और एक्यूरेट बताएंगे हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को वहां जल्द से जल्द पहुंचने में उतनी सुविधा मिलेगी, तो ये सेवा पूरी तरह से जनता के लिए है, तो जनता को इसको एक तरह से अपना एसेट मान के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: अपनी बेहद व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं, ये उन रास्तों का भी नाम है जहाँ मुश्किलें भी मिलती हैं और उम्मीदें भी, बस जरूरत है हर धड़कन को महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहने की। तो चलिए अब इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये शानदार गीत।

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आपकी रेडियो साथी शीतल अटखड़े के साथ। श्रोताओं, एक समय था जब कहा जाता था जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने इस सच और झूठ के बीच की दूरी को बेहद धुंधला कर दिया है। अब पलक झपकते ही किसी का चेहरा, किसी की आवाज कॉपी की जा सकती है, जिसे हम डीप फेक कहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डिजिटल दुनिया में हम सचमुच सुरक्षित हैं? इसी अहम सवाल का जवाब खोजने और इस AI के माया जाल की कमजोरियों को समझने के लिए हमारे अपने शहर के NIT रायपुर में एक खास अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जहां अमेरिका और ताइवान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर छात्रों को डिफेंसिव AI और साइबर सुरक्षा की नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस विषय पर सीधी और साफ बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं NIT रायपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति चंद्राकर जी। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम
1: नमस्कार, आकाशवाणी रायपुर के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार है।
0: मैम, सबसे पहले तो NIT रायपुर में होने वाली इस 5 दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप और इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बताइए।
1: यह 5 दिनों का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो 22 जून से 26 जून तक NIT रायपुर में होने जा रहा है, और यह पूरा आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्पार्क योजना के तहत प्रायोजित और समर्पित है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि AI का असली चेहरा पहचानना। जैसे आजकल हम हर जगह AI का यूज करते हैं, जैसे गूगल मैप है। गूगल मैप में क्या होता है कि अगर हमको किसी लोकेशन पे जाना है तो गूगल मैप का यूज करके हम कहाँ पे ट्रैफिक है, कौन सा जगह सही है, वो सब देख लेते हैं। YouTube हम चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो जैसे YouTube में हम कोई वीडियो देते हैं तो एक बार YouTube ने वो वीडियो देखा तो वो जान लेता है कि हमारी पसंद क्या है, तो उससे रिलेटेड वो वीडियोस या गाना हमको सर्च करके देने लगता है। तो ये सब AI के जरिए ही हो रहा है। तो AI जितना ज्यादा फायदेमंद है, अगर उसका हम गलत इस्तेमाल करें तो उतना ही वो खतरनाक हो सकता है। तो ये सारी चीजों पे इस वर्कशॉप में बताया जाएगा कि कैसे हम AI का सही यूज करें, कहाँ पे अटैक पॉसिबल है। और ये जो वर्कशॉप है वो अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती और रिसर्च को भी बढ़ावा देगा, और इस सरकारी पहल का मुख्य उद्देश्य है कि अलग अलग देशों के जो शिक्षण संस्थान हैं और जो रिसर्चर हैं उनके बीच का आपसी तालमेल को मजबूत करना।
0: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है हमें भी उससे एक कदम आगे रहना होगा। और जब हम डिजिटल खतरों की बात करते हैं तो एक शब्द जो आजकल हम सभी को सबसे ज्यादा डराता है तो वो है डीप फेक। तो इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में आप छात्रों को डीप फेक और फॉरेंसिक की वो कौन सी खास तकनीक सिखाने वाले हैं जिससे असली और नकली मीडिया के बीच तुरंत फर्क किया जा सके?
1: तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि डीप फेक होता क्या है। तो डीप फेक में क्या होता है कि AI की मदद से हम किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा, नकली चेहरा या आवाज बना देते हैं जो बिल्कुल ही असली आदमी या उसके असली आवाज की जैसी लगी है। तो इस वर्कशॉप में इसे पकड़ने के लिए आसान और असरदार तरीके बताए जाएंगे, और जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए यह भी देख सकते हैं कि कोई इंसान असली है या नकली। जैसे कोई इंसान की जो पलके हैं वो सही तरीके से या सामान्य रूप से झपक रही है या नहीं झपक रही है, कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उसके होठों और आवाज का तालमेल सही है या नहीं है, के चेहरे की रोशनी क्या अजीब सी लग रही है। तो ये सारी बारीकियां हमारी आंखें नहीं देख पाती, बट हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ये सारी चीजों को पकड़ सकते हैं। तो ये सारी तकनीक और बारीकियां इस वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी।
0: जी, ये जानकारी वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन जब बात हमारी सेहत और हमारे सबसे निजी डेटा की आती है तो चिंता और भी बढ़ जाती है। तो ये बताइए कि AI की हैकिंग या कमजोरियां हमारे मेडटेक सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है?
1: आजकल AI का हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे एक्सरे और MIR देखकर बीमारी का पता लगाना। तो अगर इस मेडिकल सिस्टम में कोई हैक करे तो वो हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा कोई एक्सरे रिपोर्ट है, अगर कोई हैकर जो है उस एक्सरे रिपोर्ट में थोड़ा भी छेड़छाड़ कर देता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ऐसे बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट हो सकता है, उसको भारी दवाइयां दी जा सकती है, और जो एक्चुअल में जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है AI का यूज करने से। तो ये सारी चीजों से कैसे बचना है, और साथ में हमारी जो बीमारी की जानकारी होती है वो बहुत ज्यादा निजी होती है, तो इसके बचाव के लिए हम कौन कौन से टेक्निक यूज करें, वो सारी चीजों को इस वर्कशॉप में ध्यान दिया जाएगा और वो सारी चीजें छात्राओं को सिखाया जाएगा।
0: जी मैम। और मैम, अब चलते चलते हमारे जो युवा और छात्र आपको इस समय लाइव सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
1: तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य जो है वो सिर्फ AI टेक्निक बनाने का नहीं है, बल्कि उस टेक्निक को कैसे हमको सुरक्षित रखना है। तो आज के युवा के लिए सीधा संदेश देना चाहूंगी मैं कि AI का इस्तेमाल तो जरूर करिए, लेकिन खतरों के प्रति भी जागरूक रहिए, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया को ऐसे भी युवाओं की बहुत जरूरत होगी जो इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित सके। तो इस वर्कशॉप का हिस्सा बनकर छात्र साइबर सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं, जो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा।
0: जी बिल्कुल मैम, अपना कीमती समय निकालने और इतनी अहम तकनीकी बातों को इतने सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, चाहे AI हो या कोई और नई तकनीक, हर नई चीज एक नई सुबह की तरह होती है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी इस नई जनरेशन पर है। हमारे युवा तैयार हैं इस नई दुनिया को, इस नई सुबह को अपनी बाहों में समेटने के लिए। तो आइए इसी खूबसूरत और जिम्मेदार कल का स्वागत करते हैं इस ताजगी भरे गीत के साथ।

दोस्तों, आज बात उस विषय की जो हर घर से जुड़ा है, हर रिश्ते से जुड़ा है, लेकिन अक्सर उस पर सबसे कम बात होती है। वो है महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकार। हमारी दुनिया की शुरुआत एक स्त्री से होती है। वो माँ बनकर जीवन देती है, बेटी बनकर उम्मीद, बहन बनकर विश्वास और पत्नी बनकर साथ निभाती है। लेकिन क्या कभी आपने उनसे ये पूछा है कि आप कैसी हैं? घर की जिम्मेदारियों के बीच, ऑफिस की भागदौड़ में, परिवार की चिंता में महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख देती हैं। सिरदर्द हो, कमजोरी हो, तनाव हो, एक ही जवाब, अभी बहुत काम है, बाद में देखेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या एक स्वस्थ महिला के बिना स्वस्थ परिवार की कल्पना संभव है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य एवं अधिकार कार्य दिवस हमें ये बतलाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं, उनका अधिकार है। सही पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, समय पर इलाज और अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता, ये हर महिला का हक है। और जरूरत है सोच बदलने की। जब घर में बेटी की थकान को नाटक नहीं, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा, जब माँ की दवा घर के बाकी खर्चों जितनी जरूरी मानी जाएगी, तभी असली बदलाव आएगा। क्योंकि एक महिला सिर्फ परिवार नहीं संभालती, वो पूरी पीढ़ी को संवारती है। तो आइए आज एक वादा करें, घर की हर महिला से सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि खाना खाया, बल्कि ये भी पूछेंगे, आप ठीक है ना? दोस्तों, सम्मान और अपनापन जब रिश्तों में उतर आता है तो हर पल खास बन जाता है। और जब एक महिला अपनी खुशियों और सेहत का ख्याल रखने लगती है तो यकीन मानिए, उसका मन भी एक आजाद परिंदे की तरह गुनगुनाने लगता है। उसी आजादी और सुकून और खुद से प्यार करने के नाम सुनिए ये बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत सुनिधि चौहान की दिलकश आवाज में।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: दोस्तों, आज है विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे। एक ऐसा दिन जो हमें सिर्फ भूख नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का आधार है। लेकिन आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी थाली अधूरी है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सपनों से पहले उनकी भूख जाग जाती है। इसी सोच के साथ हर साल विश्व भूख दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया को ये एहसास कराया जा सके कि भूख सिर्फ अन्न की कमी नहीं बल्कि सही पोषण, जागरूकता और समान अवसरों की कमी भी है। तो आखिर कैसे बने एक जागरूक, पोषण संपन्न और भूख मुक्त समाज, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं यूनिसेफ रायपुर की न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपर्णा देशपांडे।
5: रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
6: धन्यवाद शीतल।
5: मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे क्यों मनाया जाता है और आज के समय में इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है।
6: भूख और खाना या पोषण, ये अलग अलग चीजें हैं और इसमें फर्क समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भूख को समझें तो भूख का मतलब सिर्फ खाना न मिलना नहीं है बल्कि सही पोषण न मिलना भी है। आज के समय में यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही पोषण पर निर्भर करता है। कुपोषण से स्वास्थ्य, पढ़ाई और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है और ये धीरे धीरे पूरे समाज के भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह दिन हमें ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए।
5: जी बिल्कुल मैम, लेकिन जब हम भूख की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ पेट भरने की सोचते हैं, लेकिन आज हिडन हंगर यानी कुपोषण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो आप हमारे श्रोताओं को सिर्फ खाना मिलने और सही पोषण मिलने के बीच का फर्क कैसे समझाएंगे।
6: हाँ, ये फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे खाना मिलने का मतलब है पेट भरना, जैसे सिर्फ चावल या रोटी खाने से या आजकल बच्चे बिस्किट, नूडल्स, चिप्स, ये अन्य जंक फूड खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इस खाने से उन्हें कोई पोषण नहीं।

0: मिलता। सही पोषण का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व हो। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर रोज केवल चावल खा रहा है लेकिन उसमें दाल या सब्जी नहीं है तो वह कुपोषित हो सकता है। एक स्वस्थ थाली में होना चाहिए अनाज जैसे चावल या गेहूं से बने हुए पदार्थ, प्रोटीन जो हमें दाल, दूध, अंडा, मांस इनसे मिलता है, हरे सब्जियां और फल, और थोड़ी मात्रा में तेल या वसा। यूनिसेफ के अनुसार स्वस्थ आहार संतुलित, विविध और सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हमें केवल पेट भरने से आगे बढ़कर शरीर को पोषण देने पर ध्यान देना होगा।
1: जी बिल्कुल मैम। मैम आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड के दौर में हमारी थाली का पोषण काफी बदल गया है। एक स्वस्थ और कुपोषण मुक्त परिवार के लिए रोजमर्रा की डाइट में कौन से छोटे लेकिन जरूरी बदलाव तुरंत किए जा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें कुछ आसान से बदलाव हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी थाली को रंगीन बनाएं, जैसे हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन को शामिल करें। हर दिन प्रोटीन ले, दाल, चना, दूध, अंडा जरूर खाएं। मौसमी या स्थानीय चीजें खाएं, जैसे ये सस्ती भी होती है और ज्यादा पौष्टिक भी होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में शामिल करें, इनसे आयरन जो बहुत जरूरी है शरीर के लिए वो मिलता है। जंक फूड से दूर रहे, ये पेट भरते हैं लेकिन पोषण नहीं देते। साथ में साफ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखें क्योंकि सुरक्षित भोजन भी तो बहुत जरूरी है। और माँ और बच्चे पर खास ध्यान दें, जैसे हम कहते हैं यूनिसेफ में पहले 1000 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये छोटे छोटे से कदम परिवार को कुपोषण से बचा सकते हैं।
1: जी मैम। और मैम अब आखिर में आप हमारे श्रोताओं को सेहत, पोषण और अन्न के सम्मान को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: तो इस अवसर पर शीतल मेरा खास संदेश ये रहेगा कि भोजन का सम्मान करें और उसे बर्बाद न करें। केवल पेट भरने नहीं बल्कि पौष्टिक खाने पे ध्यान दें क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और ये केवल सरकार की नहीं बल्कि हर परिवार और हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले लें, हर बच्चे को सही पोषण मिलेगा, हर परिवार स्वस्थ रहेगा और हम कुपोषण मुक्त समाज बनाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं सही पोषण तो देश रोशन।
1: जी बिल्कुल, आज आपने बहुत ही सरल, संवेदनशील और जागरूक करने वाले अंदाज में भूपोषण और अन्न के सम्मान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
0: धन्यवाद शीतल।
1: श्रोताओं, जिंदगी की जद्दोजहद और हकीकत से जुड़ी इस खास बातचीत के बाद अब वक्त आ गया है मेरे इस खूबसूरत सफर के आखिरी पन्नों को पलटने का। हमारी और आपकी यादों की किताब में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रही है एक प्यारी सी कहानी। पेश है आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

क्या पता हम में है कहानी या हैं कहानी में हम। सच ही तो है, जब मैंने इस स्टूडियो में, इस शहर में पहली बार कदम रखा था तो मेरी अपनी एक कहानी थी। लेकिन आज जब मैं यहाँ से एक नए सफर की ओर बढ़ रही हूँ तो उस कहानी में आप सभी श्रोताओं की अनगिनत यादें, ढेर सारा अपनापन और बेहिसाब प्यार हमेशा के लिए जुड़ गया है। ये माइक, ये स्टूडियो, आपके पत्र, ईमेल्स और प्रतिक्रियाएं मेरी जिंदगी की इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेंगे। कितनी ही सुबह हमने साथ देखी हैं,

0: कड़कड़ाती ठंड, बारिश की बूंदें या गुनगुनी धूप, मेरी ऐसी कई खूबसूरत सुबहों की शुरुआत को आपके साथ ने और भी खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, नमस्कार रायपुर मेरे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा, ये मेरी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत एहसास बन गया। माइक के इस पार बैठकर मैंने हमेशा उस पार बैठे आप लोगों का प्यार महसूस किया है। शायद आपको कभी एहसास भी ना हो, लेकिन आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया, आपके संदेश और आपका यूं ही मेरी आवाज के साथ जुड़ जाना कई बार मेरी सबसे मुश्किल सुबहों में भी एक सुकून सी गर्माहट भर गया। आज सफर बस एक नया मोड़ ले रहा है, हवाएं शायद नई दिशा में बहेंगी, लेकिन हमारी और आपकी इन सुबहों की गर्माहट, इन बातों की मिठास और इन यादों की गूंज हमेशा दिल के किसी कोने में यूं ही मुस्कुराती रहेगी। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े। अब इस खूबसूरत सफर को दिल में संजोएं, आप सभी से ले रही हूं विदा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी की कहानी को हमेशा खूबसूरत बनाते रहिए। बहुत सारा प्यार और आभार। नमस्कार, जय जोहार।
1: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थी शीतल अटकड़े। ये आकाशवाणी रायपुर है, सुबह के 8 बजने को है, समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और

0: सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिम

0: भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
1: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया।

0: एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission.

0: बच्चों
1: जय हिंद।
2: बाल वाटिका कार्यक्रम के अगोरा करैया जम्मो नान्हे संगी संगवारी मन के स्वागत करत हो मैं आप मन के भैया गजानन साहू। संगी हो, अभी गर्मी छुट्टी के मौसम हा चलत हावे, फिर अवैया कुछ दिन मा स्कूल हा खुल जही और स्कूल खुले के संग पढ़ाई के कारज हा फिर शुरू हो जही। अभी बहुत झन नान्हे संगी मन हा पढ़ाई लिखाई ला पूरा भुला गे होही अब बस खेलई कूदई मा अपन बेरा ला पहावत होही। फिर संगी हो, स्कूल खुले के संग पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, फिर एकरे संग हमन हा अपन खेलई कूदई ला घलो जारी रख सकथन, काबर के पढ़ाई लिखाई के संग खेल कूद करके हमन हा अपन शारीरिक और मानसिक विकास घलो कर सकथन। कहे जाते स्वस्थ शरीर मा स्वस्थ मन के वास होते, जेकर ले एकाग्रता बाढ़ते और पढ़ाई मा बेहतर परिणाम घलो मिलते। पढ़ाई के संग खेल कूद के नियंत्रण ला बना के हमन हा अपन मानसिक तनाव ला कम कर सकथन। लगातार पढ़ाई करे के सेती हमर दिमाग हा थक सकथे, जेला खेल कूद के माध्यम ले हमन हा तरोताजा कर सकथन, एकर ले हमर एकाग्रता हा बाढ़ी। खेल कूद ले शारीरिक ऊर्जा के सही उपयोग होते, मांसपेशी मजबूत होते और रक्त संचार हा घलो बढ़िया रथे। नान्हे संगी हो, स्कूल मा बहुत झन पढ़ैया लिखैया रथे, उकर मन सन टीम बना के खेल खेले ले हमर मन मा अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल के विकास होते। खेल के हार और जीत दोनों हा हमर जिंदगी भर जरूरी शिक्षा देते। यदि हमन हा जीत जथन तो हमर आत्मविश्वास हा बाढ़ते, फिर हमन हा हार जथन तो अफसोस करे के बदला एमे काबर हारेन तेकर बारे में जान के ओला सुधार सकथन। इही गुण मन हा आगे चल के हमर जिंदगी ला आसान बनाए मा बहुत मदद कर सकते। नान्हे संगी हो, खेल कूद हा पढ़ाई के संग और दूसर गतिविधि मन के बीच मा संतुलन बनाना सिखाते,

जेकर ले हमन ह समय के महत्ता ल घलो जान सकथन। ए सब बात मन ल जान के हमन कही सकथन के खेल कूद ह हमर पढ़ाई के संग बहुत जरूरी हे। फिर आज के बेरा म लइका मन ह मैदान म खेले ल छोड़ के टीवी देखना अउ मोबाइल गेम में खेलना ज़्यादा पसंद करथे, जे ह हमर मानसिक अउ शारीरिक विकास मन म बाधा बन सकथे। ता संगी हो, आप जम्मो झन ह ज़्यादा ले ज़्यादा हमर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल जैसे गिल्ली डंडा, छुआउल टीप, लुकाउल टीप, खो खो, कबड्डी मन ला खेलो अउ आने वाला पीढ़ी मन तक एला पहुँचाए में मदद करो। फिर चलो अब सुनथन ये खेल गीत ला।

0: पुनौराम साहू और साथी मन के आवाज मा अभी हमन सुनेन गीत खुड़ू डुडू। फिर अब बढ़थन हमर अगला क्रम बाल कविता डहान, जेमे आज के हमर कवि है श्री बिहारी राम साहू जी।
1: बाल वाटिका सुनैया जा मो नान्हे संगवारी मल्ला, बिहारी साहू भैया के जय जोहार। नान्हे संगवारी हो, आज मेहा तुहर मन बर सुंदर सुंदर बाल कविता लेके आए हूँ। मोर पहली कविता सुनाओ। नान्हे संगवारी हो, लैका मान हमर राष्ट्र के भविष्य आओ। त राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रीय संपत्ति के रख रखाव और सुरक्षा के भाव बचपन ले होना जरूरी हवय। इही ला ध्यान रखत मैं हा तुहर मन बर एक कविता लाए हूँ, ध्यान से सुनाओ। नरवा सिरागे बाग सिरागे सिरागे बखरी बारी, नरवा सिरागे बाग सिरागे सिरागे बखरी बारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी। सबो जगह के नदिया सुखागे गरुआ मन पानी बर तरसत हे, सबो जगह के नदिया सुखागे गरुआ मन पानी बर तरसत हे, जगह जगह म कचरा बगरे हे कहाँ फेंक ही अब घुरुआ नहीं है, जगह जगह म कचरा बगरे हे कहाँ फेंक ही अब घुरुआ नहीं है। पैरावट यो कोठार बारी नंदागे जी संगवारी, नरवा सिरागे बाग सिरागे सिरागे बखरी बारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी। नरवा ला भर देव संगवारी जंगल जुर मिल रोपे बारी, नरवा ला भर देव संगवारी जंगल जुर मिल रोपे बारी, धरती मैया फेर ले हंसही घुरुआ के गंध मासु घर बसही, धरती मैया फेर ले हंसही घुरुआ के गंध मासु घर बसही, बारी महरियर फसल जन्मही गांव के सूरज फेर चमकही, बारी महरियल फसल जन्मही गांव के सूरज फेर ले चमकही। नरवा सिरागे बाग सिरागे सिरागे बखरी बारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी। नदिया बाची तब जिंदगी बाचही घुरुआ बने तब धरती रांचही, नदिया बाची तब जिंदगी बाचही घुरुआ बने तब धरती रांचही, गरवा रगबे त खेती चलही बारी में हरियर नहीं बोझा बनही, गरवा रखबे त खेती चलही बारी में हरियर नहीं बोझा बनही। आओ मोर संगी सबो सुधारन गांव के रूप ल फेर संवारन, आओ मोर संगी सबो सुधारन गांव के रूप ल फेर संवारन। नरवा सिरागे बाग सिरागे सिरागे बखरी बारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी, बाग बगीचा यो फुलवारी उजरगे जी संगवारी। आवो संगवारी हो, पेड़ पौधा के सुरक्षा कतका जरूरी है, यही मैं आप उनके बीच में

एक कविता लेके आए हूँ। झन काटो रुख राईला, झन उजारो हमराईला। झन काटो रुख राईला, झन उजारो हमराईला। झन काटो रुख राईला, झन उजारो हमराईला। एकर हवे सा बोला जरूरत, एकर हवे सा बोला जरूरत। जानो संगी संगवारी गा, झन काटो रुख राईला, झन

रुख बिना भुइया सुख जाही, तोर माटी दर दर हो जाही। रुख बिना भुइया सुख जाही, तोर माटी दर दर हो जाही। नदिया लघाम

झन उजारो अमराइला, झन काटो रुखराइला, झन उजारो अमराइला। चिरै चिरगुन मन गावत रहे, अमरई मसोन चिरैया रहे। चिरई चिरगुन गावत रहे, अमरई मसोन चिरैया रहे। ओ मन लाघर विहीन झन बनावो, रखवैया बन जा।

झन उजारव अमराईला, रुख हदे थे ठंडा छाया, फल फूल यौ पर नया चाया, रुख राई दे थे ठंडा छाया, फल फूल यौ पर नया चाया, जिंदगी के आधार ही है, जिंदगी के आधार ही है, मन के बन जा रखवाला गा, झनकाट

आवो संगमा मिल के बैठाओ हरियर माटी ला सजावन, आवो संग मिल बैठाओ हरियर माटी ला सजावन, नवा पौधा लगावन संगवारी, नवा पौधा लगावन संगवारी, हरियर छैया बनावन गा झनकाटो।

राम, ये कर हवे सा बोला जरूरत, ये कर हवे सा बोला जरूरत, जाना संगी संगवारी गा। झनकाट हो रुख राईला, झन उजारो अमराईला, झनकाट हो रुख राईला, झन उजारो अमराईला। संगवारी हो, आज हमन देखत हन कि किसान मन पैरा भूसा ला खेते म लेस देते, और गाय गरु मन भूख म तरसत हे, और हमर नान्हे संगवारी मल्ला दूध पिए बर नुहर हो गे। त संगवारी हो, अपन सियान मल्ला समझावो कि पैरा ला झन जलाए। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन, पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन, कैसन कल जुग आगे से जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन, कैसन कल जुगे आगी से जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन, पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। जेती देखाओ तेती घुमा था वे चारों कोती, खेत खली हाँ।

रुंधा गे हवय, अब जाही वो मन काती। जेती देखाओ तेती घुमत हवय चारो कोती, खेत खलिहां रुंधा गे हवय, अब जाही वो मन काती। खेत खलिहां रुंधा गे हवय, अब जाही वो मन काती। कांटा खूटी छरपा गे हे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। कांटा खूटी छरपा गे हे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा लाले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन।

0: गरुआ मन। कांटा खूटी छर पागे हे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। बन बदो यौ कांदी मा दवाई गोटी छितागे, पैरा भूसा मा आगी लगा दिस किसान के चेथरागे। बन बदो यौ कांदी मा दवाई गोटी छितागे, पैरा भूसा मा आगी लगा दिस किसान के चेथरागे। पैरा भूसा मा आगी लगा दिस किसान के चेथरागे। मेरे मेरे नरियावत हे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। मेरे मेरे नरियावत हे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। डोंगरी डोंगरी यो चौक चौराहा, चारों कोती घेरा गे। बुलका नैसा कै को नोहा, अब झटका तार लग गे। डोली डोंगरी यो चौक चौराहा, चारों कोती घेरा गे। बुलका नैसा कै को नोहा, अब झटका तार लग गे। बुलका नैसा कै को नोहा, अब झटका तार लग गे। बड़कर लई हो गे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। बड़कर लई हो गे जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे जी, काला गाही गाय गरुआ मन। कैसन गल जुग आगी से जी, कहाँ जाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन। पैरा भूसा ला ले सत हे गा, काला खाही गाय गरुआ मन।
1: नान्हे संगी हो, अभी हमन ह क्रम बाल कविता मा श्री बिहारी राम साहू जी ले बाल कविता सुनत रहेन, जेमे ओमन ह नंदावस जिनिस मन के बारे मा बड़ सुघ्घर ढंग ले अभिव्यक्ति दिन। फिर अब चलो सुन लेथन एक ठन सुआ गीत ला।

गीता वर्मा के स्वर में अभी हमन सुनत रहन सुआ गीत। नान्हे संगी हो, हमर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाका डहान हाथी मन के आवागमन है बहुत लगे रथे। तो चलो आज के हमर अगला क्रम रोचक जानकारी में हमन जानथन हाथी के बारे में। संगी हो, हाथी के शरीर ह बड़े रथे, तेकरे सेती ओहा अपन शरीर के गर्मी ला बाहर निकाले बर अपन बड़े बड़े कान ला हलात रथे। कहे जाते कि हाथी ह पानी ला बहुत धुरिया ले सूंघ डारथे। हाथी ह हर मिनट मा 2-3 घाव सांस लेथे और छोड़थे। एहा ऐसन एकलौता जानवर हरे जेहा कूद नहीं सके। जैसे जैसे मनखे मन के आवाज ह अलग अलग रथे ना संगी हो, उसने हाथी मन के आवाज ह घलो अलग अलग रथे। हाथी ह साफ सुथरा रहना पसंद करथे। हाथी के आँखी के रोशनी ह एकन कम रथे, तेकरे सेती ओहा अपन सूंड ले जमीन में फूंकथे और उहां ले वापिस आए हवा के माध्यम ले अंदाजा लगा के चलना पसंद करथे। मादा हाथी ह हर 4 बछर में 1 बच्चा जन्म देथे। सामान्य हाथी के जीवन काल ह 70 बछर तक ले हो सकथे। जानवर मन मा हाथी के दिमाग ह सबले बड़े रथे। ए हा बढ़ दे ले पानी मा तौर सकथे। ए मन हा एक दिन में 100 किलो भोजन खा सकथे। हाथी के जिंदगी के संग उकर दांत ह घलो बाढ़ते रथे। ता संगी हो, ये रहिस जानकारी हाथी के बारे मा। फिर अब चलो गीत के माध्यम ले एकन झूलना झूल लेथन।

0: झुलना के झूल ए गीत ला भी हमन सुनत रहेन समूह स्वर मा। फिर अब मोर जाए के बेरा हो गे हाबे, ता आज के हमर कार्यक्रम हा कैसे लागिस तेला चिट्ठी पाती के माध्यम ले जरूर बताऊ। फिर चिट्ठी पर ठोए बर लिख लेव हमर पता, कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 492001। और हमर ईमेल के पता है राय लैका मन के चिट्ठी 14@gmail.com। एकरे संग हमर आज के कार्यक्रम हसीरा बताबे, त देव अपन भैया गजानन साहूला विदा।
1: बच्चों जय हिंद।

0: बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रगति के सोपान। इसमें सुनिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य पर एम्स रायपुर के उप चिकित्सा अधिकारी और नोडल ऑफिसर डॉक्टर रमेश चंद्राकर से बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वच्छ आत्मा निवास करती है और स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अस्वस्थ होने पर हमारा मन खराब होता है, हमारा तन खराब होता है और साथ ही हमें बीमार होने पर स्वस्थ होने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है हम हेल्दी डाइट लें, अपने शरीर को थोड़ा थकाएं, व्यायाम करें और भरपूर नींद लें। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर बीमारी की चपेट में आ जाता है और हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भारत सरकार ने ऐसी कुछ बीमारियों के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं जिनका इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाता है और इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्डधारियों को गैर बीपीएल कार्डधारी लोगों को भी उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो श्रोताओं, आयुष्मान भारत योजना क्या है और आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर रमेश चंद्राकर जी से, जो डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं और साथ ही नोडल ऑफिसर हैं आयुष्मान भारत के लिए एम्स रायपुर में। तो डॉक्टर रमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: तो डॉक्टर रमेश चंद्राकर जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई थी और साथ ही इस योजना का उद्देश्य क्या है।
2: जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 55 करोड़ लाभार्थी जो भारतीय आबादी के निचले 40% का गठन करते हैं, को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
1: तो डॉक्टर रमेश जी, अभी देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही हैं?
2: जी, इस योजना के अंतर्गत हर पात्र परिवार को प्रति वर्ष इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस बीमा कवर मिलता है, जिसमें सूचीबद्ध अर्थात इम्पैनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज को कोई पैसा नहीं देना पड़ता।

0: सकता है। इसमें उम्र, लिंग या परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है और पूरे परिवार को कवर किया जाता है। इस योजना में मेडिकल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक, डे केयर इलाज और इमरजेंसी में भर्ती की सुविधा शामिल है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों के लिए इसका लाभ मिल सकता है?
0: जी, आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश में उपलब्ध है, अर्थात लाभार्थी भारत में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जाकर कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है। इस योजना में लगभग 2000 मेडिकल और सर्जिकल पैकेज शामिल हैं, जिनमें लगभग सभी छोटी, बड़ी और गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है, जैसे हृदय रोग संबंधित, किडनी रोग संबंधित, पेट रोग संबंधी, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग, बाल रोग विभाग, जनरल सर्जरी, सुपर स्पेशलिटी सर्जरी, नेत्र रोग, हड्डी रोग, कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तथा विभिन्न प्रकार की बड़ी सर्जरी शामिल है। यह योजना उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करती है, जिनमें दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, बेड चार्जेस, सर्जन शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क आदि इसमें शामिल हैं।
1: जी, तो डॉक्टर रमेश चंद्राकर जी, आयुष्मान कार्ड कहाँ बनवाया जा सकता है और इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या पात्रता की शर्तें होती हैं?
0: जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्रता का मुख्य आधार सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना जिसे हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आंकड़े हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भी लाभार्थियों को जोड़ा है। आयुष्मान कार्ड आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर बनवा सकते हैं। वहां जाकर आधार और लाभार्थी से संबंधित अन्य दस्तावेज जमा करने पर आयुष्मान मित्र आपकी पात्रता सत्यापित करेगा और तत्काल ही आपका आयुष्मान कार्ड तैयार कर देगा। यदि जब किसी रोगी को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता पड़ती है तो वह रोगी अपना आयुष्मान कार्ड के सत्यापन पश्चात इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में चिकित्सक की सलाह अनुसार संबंधित बीमारी के लिए निर्धारित पैकेज में सम्मिलित किया जाता है। पैकेज को उसी समय बुक कर दिया जाता है तथा उसी पैकेज के अंतर्गत रोगी का उपचार तत्काल प्रारंभ कर दिया जाता है और इस योजना में रोगी को किसी भी प्रकार की नगद राशि अथवा कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी, डॉक्टर रमेश जी, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं, जैसे आप एम्स हॉस्पिटल में हैं, तो वहां जब कोई मरीज भर्ती होता है तो यदि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वहां पर कैसे ही भर्ती होने के बाद आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकता है, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है?
0: जी, जैसे किसी व्यक्ति के पास में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वह अस्पताल में जब आते हैं तो सारे अस्पतालों में, सूचीबद्ध अस्पतालों में एक आयुष्मान कियोस्क या आयुष्मान हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां मरीज पहुंचकर अपनी जानकारियां देकर, आधार कार्ड या संबंधित राशन कार्ड या उससे संबंधित जानकारी देकर उनका आयुष्मान कार्ड आयुष्मान मित्र तत्काल ऑन स्पॉट तैयार कर सकते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, मरीज जब भर्ती होता है तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं होता, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से अपना इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए?
0: इसमें यह मैं बताना चाहूंगा कि यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य से संबंधित है, इसमें अन्य राज्य के लाभार्थी भी पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। वह अपना आधार कार्ड लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्वास्थ्य विभाग की जो पोर्टल है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पोर्टल है, उसमें सर्च करने के बाद हम आयुष्मान कार्ड की उनकी जानकारी को सत्यापन करके तुरंत उनका आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं एवं लाभार्थी को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर सकते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, इसमें जो जानकारी लोगों के पास इसकी कमी होती है, लोग ओपीडी के इलाज के लिए भी इसका यूज करना चाहते हैं, तो इसमें बताइए कि इसके क्या नियम होते हैं?
0: जी जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया जो है, आयुष्मान कार्ड जो योजना जो है, यह वर्तमान में भर्ती होने के बाद ही इसका उपयोग या फायदा लिया जा सकता है, वर्तमान में यह ओपीडी बेसिस में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
1: और डॉक्टर साहब, जब

0: व्यक्ति कोई भर्ती होता है तो उसके कौन कौन से जो डायग्नोसिस के जो टेस्ट होते हैं, जांच होती है, उसमें किन किन जांचों के लिए आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है?
1: आयुष्मान भारत योजना के लगभग 2000 मेडिकल एवं सर्जिकल पैकेज बनाए गए हैं। यह पैकेज देश के विभिन्न स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एवं सर्जिकल डॉक्टर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्होंने ये देखा कि सारे जगहों के हॉस्पिटल्स के डाटा लेने के पश्चात में बहुत सारे स्पेशलिस्ट पैकेज बनाए गए हैं जिनमें उन मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए उपचार के लिए उनको फायदा प्रदान की जा सकती है तथा इस इलाज के दौरान में जैसे सर्जिकल कोई पैकेज ब्लॉक करते हैं तो उसके संबंधित जो भी उसमें इलाज की जरूरत पड़ेगी, जो भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी वो उसके अंदर में शामिल रहेगा। इसमें मैं यह भी एक चीज बताना चाहूंगा कि एक हाई एंड पैकेज का भी प्रावधान रहता है जिसमें किसी मरीज को 5000 रुपए तक का एक्स्ट्रा कोई जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हम एक अलग से पैकेज बुक कर सकते हैं।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग है सीनियर सिटीजन्स का, तो इसमें जो है आयुष्मान कार्ड में सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कोई अलग से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
1: जी, वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की शुरुआत अक्टूबर 2024 में की गई थी ताकि वरिष्ठ नागरिक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर सके। यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें 5 लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ नागरिक पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी मिलता है।
0: तो डॉक्टर रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये आम नागरिकों के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है और इसका लाभ वो लें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, जैसे मैंने बताया कि ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें यह सोच है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को जब बीमार पड़ता है और उसे भर्ती की आवश्यकता पड़ती है तो उसे काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है जिसमें आर्थिक भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है।
0: जी जी,
1: तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की यह सोच बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय कदम है जिसका लाभ हमारे यहाँ भी हम हमारे अस्पताल में देखते हैं कि काफी मरीजों को बहुत बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एवं मरीज जो है संतुष्ट होकर जाते हैं ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ साथ में निःशुल्क कैशलेस सुविधा का भी फायदा मिल पा रहा है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब आयुष्मान कार्ड को लेकर जो सबसे बड़ा एक जो दिक्कतें आती है कि ये कार्ड हम कहाँ से प्राप्त करें और कहाँ कहाँ ये बनती है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, इसके लिए जो है भारत सरकार कई बार आयुष्मान के लिए पखवाड़े में भी और आयुष्मान कैंप लगाते रहती है जिसमें आप घर घर जाके भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा आयुष्मान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आप किसी भी सूचीबद्ध सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल में भी आयुष्मान केंद्र स्थापित किए गए हैं, आयुष्मान हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी लेकर आधार कार्ड या राशन कार्ड या उससे संबंधित जानकारी कार्ड लेकर वहां जाके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करा के वहां पर अपना कार्ड बनवा सकते हैं।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि जैसे आप एम्स से संबंधित हैं तो एम्स में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे आयुष्मान कार्ड का लाभ कैसे दिया जा रहा है, एम्स में ये सुविधाएं कैसी हैं?
1: जी, आयुष्मान भारत योजना सन 2018 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी तो इसी कड़ी में एम्स रायपुर में उसी वर्ष 2018 से इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रारंभिक चरणों में से कुछ विभागों में शामिल किया गया था किन्तु धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए वर्तमान में यह योजना एम्स रायपुर के समस्त विभागों, समस्त स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी विभागों में संचालित की जा रही है। अब तक एम्स रायपुर द्वारा लगभग 1,40,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा चुका है एवं भविष्य में भी इस योजना के तहत एम्स रायपुर निरंतर मरीजों की सेवा करने के लिए अग्रसर रहेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि एम्स रायपुर में इसके लिए डेडिकेटेड आयुष्मान एक टीम बनी हुई है जिसमें हमारे मेडिकल

0: एक्सेल टीम, हमारे डेडिकेटेड आयुष्मान मित्र रहते हैं जो किसी भी मरीज के तो जब जरूरत पड़ती है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तो उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं, एवं पेशेंट को डॉक्टर की सलाह अनुसार कोई पैकेज ब्लॉक करना रहता है जिसमें उनका भर्ती होने के दौरान इलाज होना है, तो उससे प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड आयुष्मान मित्र रहते हैं जो पेशेंट्स का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं एवं उनसे संबंधित जानकारी लेकर अपलोड करते हैं जिससे मरीजों को भटकना न पड़े एवं उन्हें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का पूर्ण तरीके से फायदा मिल सके।
1: जी जी, तो श्रोताओं प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्राकर जी से जो एम्स रायपुर में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नोडल ऑफिसर हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। डॉक्टर रमेश चंद्राकर जी, कार्यक्रम में आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद। मैं अंत में यही बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और सरकार का यह प्रयास इसी सोच पर आधारित है कि कोई भी नागरिक केवल इलाज के अभाव में पीड़ा न झेले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद।
1: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: प्रगति के सोपान में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एम्स रायपुर के उप चिकित्सा अधिकारी और नोडल ऑफिसर डॉ. रमेश चंद्राकर से बातचीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए श्रोताओं पहले सुनते हैं ये संदेश।

कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और अनवर की आवाज़ों में। फारूक कैसर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जयानंद जी ने और फिल्म है कुर्बानी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आइए श्रोताओं, अब सुने राहत फतेह अली खां की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है लव आजकल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत मोहित चौहान की आवाज में। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार है प्रीतम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए फना फिल्म का गीत, आवाजें सुनिधि चौहान, सोनू निगम और आमिर खान की है। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए जावेद बशीर की आवाज में प्रसून जोशी का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, इसमें सुनिए पंथी गीत। कलाकार हैं करमचंद कोसरिया और साथी।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए करमचंद कोसरिया और साथियों के स्वर में पंथी गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंथी गीत। कलाकार थे करमचंद कोसरिया और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझाव और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि योजना के तहत संस्थाओं के इम्पैनलमेंट और कक्षा छठवीं में प्रवेश की प्रक्रियाओं में वर्तमान में विलम्ब हो रहा है। इसी कारण प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक

0: निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले दो दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत गजल कव्वाली का कार्यक्रम स्वर धारा। कलाकार हैं भूपिंदर सिंह और फरीदा खानम। कार्यक्रम की पहली पेशकश भूपिंदर सिंह की आवाज में, कलाम है गुलजार का।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजल कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। लीजिए अब सुनिए भूपिंदर सिंह की आवाज़ में ये गजल, शायर है गुलजार।

गैर फिल्मी गीत गज़ल कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे भूपिंदर सिंह और फरीदा खानम। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल, अरमान खान की आवाजों में, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार शाश्वत सचदेव और फिल्म का नाम है धुरंधर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए श्रोताओं अब सुने हेट स्टोरी 2 फिल्म का गीत। आवाजें अरिजीत सिंह और समीरा कोप्पिकर की है। अजीज काजी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अर्को ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रेया घोषाल की आवाज में लीजिए अब सुनिए सांवरिया फिल्म का गीत। नगमा निगार नुसरत बद्र और मौसीकी है मोंटी की।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर की रचना, संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है दम लगा के।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने ओके जानू फिल्म का गीत, आवाज अरिजीत सिंह की, नगमा निगार गुलजार और मौसिकी है ए आर रहमान की।

0: के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, दिन के 11 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर रियाज सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स

0: सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने।

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों हम नवतपा के ताप का सामना कर रहे हैं, सन्नाटे सड़कों पर दिख रहे हैं और पानी की तलाश में पशु पक्षी भी परेशान लग रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, दिन झुलस रहे हो या बरस रहे हो, आपकी खिदमत में हम हमेशा तैयार रहते हैं अपने कार्यक्रमों के साथ। तो चलिए ईमेल का पिटारा खोलते हैं और निकालते हैं आपके पसंदीदा गीत आपके नाम के साथ। और कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने में आज मैं हूं आपके साथ दीपा। और कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म धरती कहे पुकार से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस फिल्म के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है आप सभी श्रोताओं की। पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल। हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती मरावी, मयंक मरावी। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, यहीं से प्रिंस वर्मा। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर। और तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। तो आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने। आइए अब सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म है जस्टिस चौधरी और इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, विपुल कांबड़े, बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सहसपुर लोरमी से छोटू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, काजोल साहू, यहीं से संतोष विश्वकर्मा, सतीबाई, लोरमी ग्राम करुहानार से गोमती रजक, काजल रजक, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगू, विनय कुमार ठाकुर और राजनांदगांव से मानवेंद्र साहू और उनके साथी। तो आप सभी की नज़र करते हैं जस्टिस चौधरी फिल्म का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम ईमेल भेजे, फिल्म संगीत सुने में लीजिए। अब सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और पसंद आप सभी की है। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, रेहान, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, मुंगवाल से भारत राम पटोड़ी, जयंती पटोड़ी, हेमंत, उमंग, मोक्ष, अडार नांदघाट से माखन चांदनी वर्मा, चिरमिरी कुरसिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, आप हैं ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश देवांगन, यहीं से गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन, साथ ही आप है पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, खमार मुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी। आप सभी की फरमाइश करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना। इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है शागिर्द। और पसंद आप सभी की है। हसदा नंबर 2 से पार्वती साहू, टिकेश्वरी साहू, नागेश्वरी साहू, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन, यहीं से नितेश कुमार, तनुजा, ईशांत देवांगन, लखन लाल, सावित्रीबाई देवांगन, आप हैं लगहान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, जिला राजनांदगांव से अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, यहीं से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, ठेठाव पारा कनेरी से सनत कुमार यादव, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, पुनेश्वर रजक, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकु राघव गुप्ता। आप सभी की पसंद पर आइए सुने शागिर्द फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने। आइए अब सुने अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास को। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है आनंद मिलिंद ने और इस गीत के लिए हमें ईमेल्स प्राप्त हुए हैं आप सभी श्रोताओं के। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान, अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, राजिम से समेलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद, ममता, कुणाल धीवर, युवांश धीवर, बठेना पाठन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, सिवनी खुर्द रेंगाखार से मनशाराम पटेल, बुधियाबाई पटेल, भानु प्रताप पटेल, कुमारी पायल पटेल, आप हैं हिच्चा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, शांति वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव, ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा मोनिशा साहू, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू और इंदिरानगर भवन भरनपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुने लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब सुने अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के स्वर में समीर की शब्द रचना। संगीत रानी मलिक का है, फिल्म है सड़क और इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ ऋचा देवांगन, कुई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई फीरत राम धुर्वे, मालती धुर्वे, जिला मोहला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निखिल, नैतिक कुमार निषाद, पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद, बिनौरी विघ्नेश्वर से टीकम राम साहू, योगेश्वर साहू, हेमलता साहू, टिकेश्वरी साहू, सुदामा साहू, बिलाईगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, दत्रेंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, भुरसुदा छत्तीसगढ़ से चिराग सेन, गजेंद्र सेन, सरसेनी छत्तीसगढ़ से दुष्यंत कुमार सेन, जागृति सेन, परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया। तो आप सभी की नज़र करते हैं

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने आखिर क्यों फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार इंदीवर और संगीतकार है राजेश रोशन। और पसंद है आप सभी की छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू, धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, सोंगा मगरलोड से मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, हेयांश कुमार चंदन, बस्तर से आसाडू राम निषाद, खिलावड़ निषाद, ऋषभ निषाद, महासमुंद से भीष्मदास नर्मदा, हिरमनी, दीपक, लक्ष्यदास और ग्राम सिंगापुर से चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज, सानू धुर्वे। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने, जो आपके लिए पेश किया दीपा ने। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए और अब कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

0: होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 31 मई तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं में 23 से 25 जून तक प्रवेश लेना होगा। वहीं दूसरी चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रूप नारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू

0: क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थीं।

0: दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
4: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
3: तो कोई बड़ा है घर में?
4: हाँ, घर पर माता जी है ना।
3: जी बुलाइए।
5: माँ।
1: हाँ।
5: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
3: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
5: माँ, माँ।
6: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
6: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
6: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
4: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
4: ऐसे नहीं,
5: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
6: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: हाँ माँ।
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
4: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
7: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
7: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
7: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारत

0: भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लोक सुधा आदिवासी जनजातीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज सुनिए बुधंतिन बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत।
1: नगरी

ठुरा काया धरा धरा पटका हारे गरीब पतर जिला धरा धरा

ऊपर से आ चटुरा का जोड़ी जोड़ी का।

udah kayak

लोक सुधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुधनतीन बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत। लीजिए अब सुनिए सिरधर और साथियों के स्वर में हल्बी गीत।

0: आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में आज आपने सुना बुधनतीन बाई और साथियों के स्वर में कमार गीत और हल्बी गीत प्रस्तुत किया सिरधर और साथियों ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन

0: प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अभिजीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। गीत जावेद अख्तर का था और संगीत था जतिन ललित का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इरशाद कामिल का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और चिन्मय श्रीप्रदा की आवाजों में। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो।

शफकत अमानत अली, विशाल शेखर और क्लिंटन सिरजो की आवाज़ में अभी आपने सुना विशाल डडलानी का लिखा गीत। फिल्म रावण के इस गीत के लिए संगीत था विशाल शेखर का। कार्यक्रम के अंत में सुनिए श्रेया घोषाल और इंदर बावरा के स्वर में मनोज मुंतशिर की रचना। संगीत सागर लाहौरी का है और फिल्म का नाम है रॉकी हैंडसम।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

संदेश टू सोल्जर्स आज शाम 4 बजे और स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर महिलाएं सुनेंगी। आज की बात में विषय रहेगा आत्मसम्मान से जीना, साथी होगी दीप्ति श्रीवास्तव की हास्य वार्ता गुलगुले और दिए जाएंगे कामकाज से संबंधित टिप्स। शाम 5:10 पर युवाणी में अपन गोट का विषय रहेगा जिम्मेदारी संग बूताकरण, साथी होगा क्रम हेलोमितान और अंतस के आरोप।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर कलाकार होंगे लखन नेताम और साथी, और रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में पंथी गीत सुनिएगा करमचंद कोसरिया और साथियों के स्वर में।

ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात केंद्रित रहेगी जल संरक्षण करो भविष्य बचाओ इस विषय पर, और किसान वाणी में आज की सलाह के अंतर्गत टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन इस विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले।

ये फौजी का घर है। विनोद कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित ये नाटक आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हुसैन बख्श का गायन सुनिएगा रात 10:00। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत होगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5:00।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, ये फौजी का घर है। ये नाटक आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं विनोद कुमार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

उम्मीद है आप सभी अच्छी होंगी और गर्मी के इन दिनों में खुद का और अपने परिवार का विशेष ख्याल रख रही होंगी। बहनों, इन दिनों बच्चों की छुट्टियां हैं और उनकी शरारतें भी काफ़ी बड़ी होती हैं इन दिनों, इसलिए इस खाली समय में आप उन्हें उनकी पसंद के हॉबी क्लास भेज सकती हैं, जिससे समय का सदुपयोग होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी होना शुरू हो जाएगा। बहनों, जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने मूल्यों का सम्मान करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे जीवन में बिना किसी के दबाव में आए सटीक और स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं। आत्मसम्मान हमें यह सिखाता है कि दूसरों से कैसा व्यवहार पाना हमारा अधिकार है। यह आपको किसी भी रिश्ते में अपमान या दुर्व्यवहार सहने से रोकता है। जब आप खुद को महत्व देती हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, समाज और कार्यक्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान और विश्वसनीयता बनती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इस तरह आत्मसम्मान घमंड या अहंकार का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति सच्चा होने और अपनी गरिमा का आदर करने की कला है। बहनों, जब बात आती है महिलाओं की, तो उन्हें दूसरों पर निर्भरता खत्म कर अपने कौशल का हर पल विकास करते रहना चाहिए, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में तरक्की कर सकती हैं और अपना आत्मविश्वास मजबूत कर सकती हैं। बहनों, असफलताएं और मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, मगर इस चुनौतीपूर्ण समय को पराजित करना हौसले का काम है और ये हौसला आत्मविश्वास से ही आता है। जिंदगी आसान बन जाती है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है।

0: मेरी जंग, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें दी थी शब्बीर कुमार ने। श्रोता बहनों, जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हंसना न केवल एक प्राकृतिक क्रिया है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि भी है। यह तनाव कम करता है, सकारात्मकता लाता है और आपसी संबंधों को मजबूत भी बनाता है। इसी क्रम में आइए सुनते हैं श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव की हास्य वार्ता गुलगुले।
1: नमस्कार बहनों, मैं दीप्ति श्रीवास्तव आज आपको हास्य वार्ता गुलगुले सुनाना जा रही हूँ। गुलगुले, गुल

गुलगुले। बचपन का यह गाना आज जब याद आता है तो अपने आप मन प्रसन्नता से भर उठता है और मन गुलगुले खाने का होने लगता है। यदि किसी दुकान पर मिलता तो सीधे आर्डर पर कर घर बुलाकर गुलगुले खाने का मजा लेते। हाय रे जमाना, तूने मेरे पसंद की पारंपरिक व्यंजन को किस हाशिए पर ढकेल दिया, किस जगह चला गया मेरा प्यारा गुलगुला। जीवा को गुलगुले के स्वाद की याद आते ही मुंह में पानी आने लगा, लार टपकने टपकने को होने लगी। बड़ी मुश्किल से लार को मुंह से बाहर निकलने से रोक पाए। किसी को क्या समझ आए ना आए कि इस उम्र में भी बच्चों जैसी लार टपकाती है। जिसे भी देखा चार लोग को देखकर बताएंगे, गाएंगे, देखो देखो कैसी है यह। गुलगुले का नाम आते ही मुंह से लार टपकाने लगती है, पीठ पीछे उसके बारे में बातें करेंगे, हंसी उड़ाई जाएगी, इधर से उधर बात चलते रहेगी मोहल्ले में। इस बात का ध्यान आते ही मुंह में कंट्रोल रखना पड़ता।

मेरे प्यारे नरम मुलायम गुलगुले, कितने स्वादिष्ट मन को भाए। और तुम्हारी मीठी मीठी खुशबू जब हवा में तैरती, तब हवा भी उसको सूंघने 2 मिनट खड़ी हो, खुशी से उसकी खुशबू का आनंद लेती। नथनों को फड़काती हुई मस्तिष्क यानी दिमाग को संदेश भेजती, आज का दिन बड़ा खुशगवार रहा। नाक उस खुशबू को दिमाग में हमेशा के लिए अपने नस के कोने के तहखाने में सहेज कर बंद कर रख लेती। तभी तो किसी भी जगह मेरे प्यारे गुलगुले, जब तुम तेल में छाने जाते हो तब उसकी सुहास फैलती है। उसमें पड़ी सौंफ और गुड़ तो अपने आप को रोक नहीं पाते और महकने लगती है। आटा कितनी सुगमता से तुम दोनों को अपने में समाहित कर लेता है, अपने ही परिवार का सदस्य बना लेता है, जैसे तुम उसी के अंग हो। पानी सदैव से तो घुलने मिलने वाला रहा, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला रहा, कभी मीठा तो कभी नमकीन पानी, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता। कभी कोई बेचारा पानी शिकायत नहीं करता, और जब उसमें आटा सब गुड़ एक सार होते तो कहना ही क्या है, गुड़ तो खुलने के बाद सबको अपने रंग में रंग लेता और चॉकलेटी रंग बना देता, जैसे नई नवेली दुल्हन नवीन परिवार में घुल मिल जाती है और सबको अपना मानने लगती है। वैसे ही गुलगुले, तुम्हारे और सबका मिश्रण मिलकर एक सार हो जाते हो, फिर भी गुलगुले तुम पर जमाने का रंग नहीं चढ़ा। जमाने के अनुसार गुलगुले तुमने अपने आप को क्यों नहीं बदला, तुमने अपने आप को नहीं बदला, जमाने का तो रंग ही बड़ा खराब है गुलगुले। आजकल देसी पकवानों का जमाना ही नहीं रहा, देसी पकवान बेचारे एक कोने में पड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, कब उनका जमाना आए, लोग उनको अपना भाव समझे। आजकल तो चाइनीज़ मसालों का मिश्रण हर जगह किया जाता है, जिससे सभी खान पान की चीज़ों का स्वाद बदल जाता है। एक नए जमाने के लोगों की जीभ को जरूर वही स्वाद भाता होगा, पर हमारे ज़माने के लोग को जीभ को वही पारंपरिक स्वाद भाता है, वही हमारी जीवा पर स्वाद चढ़ा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारी जीवा कहती, मुझे तो अपने पारंपरिक स्वाद वाले गुलगुले ही पसंद है ना जीव, सही बोल रही हूँ ना मैं। गुलगुला अंदर से नरम ऊपर से कुरकुरा, बड़ा कुरकुरा अच्छा सुंदर कुरकुरा, कितना मज़ेदार मन को भाता है। हमारी जीभ नया स्वाद पर तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया देती है, नहीं खाना यह, अब जीभ ही मना कर दे तो गला अंदर कैसे जाने देगा, कैसे निगलेगा, बताओ भला। प्रवेश द्वार पर जब दीप का पहरेदार बिठा रखा है, जिसे नए जमाने का स्वाद बिल्कुल ही पसंद नहीं, पुराने जमाने के लोगों को पिज्जा बर्गर को मुंह भी नहीं लगाना चाहते, कितना महंगा, जिस पर ऊपरी सजावट ना कोई पौष्टिकता, जीरो है जीरो पौष्टिकता के नाम पर। हमारे खाने को तो देखिए कितने पौष्टिक होते हैं, आधुनिकता की होड़ में पारंपरिक व्यंजन खाना सब पीछे छूटते जा रहे हैं और विदेशी चाइनीज़ जबान पर चढ़कर नाच रहे हैं। आज के बच्चे गुलगुले के स्वाद को मुंह नहीं लगाना चाहते, कहते हैं मीठा भजिया है, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना, मीठे से परहेज है, इसको 4 हाथ दूर से प्रणाम नमस्कार। अरे भाई, नई पीढ़ी को क्या ज्ञान दे, उसके पास तो मोबाइल में खुद ही ढेरों ऐप और AI टूल्स हैं, जिससे वे अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। 2 दिन पहले का ही किस्सा बता रहे हैं आप लोगों को, हमने अपने कॉलेज में पढ़ने वाली टीनेजर बिटिया के जन्मदिन पर उसके दोस्तों

0: को घर में आमंत्रित किया और जानते हैं उसमें एक पारंपरिक व्यंजन गुलगुला रख दिया। नई पीढ़ी के लिए तो यह डिश गुलगुला एकदम नया था। वाव, टेस्टी, वेरी टेस्टी, यम्मी, आहा, जैसे शब्दों की फुहार उनके मुंह से निकलने लगी। अपने बनाए गुलगुले के लिए ऐसे शब्दों को सुनकर हमारा मन खुशी से झूम उठा। ऐसा लगा हमारी डिश अब आज के जमाने की प्रतियोगिता में शामिल हो गई। उनके लिए यह गुलगुला था मीठा भजिया, जो आंटी ने बनाया था, जिसे वे पहली बार खा रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन गुलगुला, मीठा मीठा, नरम नरम और लजीज स्वाद वाला। पूजा पाठ के मौके पर मीठे का भोग लगाना हो तो हम लोग गुलगुले को ही प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहली सूची में नाम गुलगुले का होता है। पूजा के पश्चात गाय, गोखरू, बैल वगैरह को भी भोग के तौर पर हम लोग गुलगुला खिलाते हैं और वे भी बड़े मज़े से खाते हैं। उनको भी समझ आ जाता है आज हमारा त्यौहार है। तब समझ आया अपने ठेर देसी पकवान गुलगुले को पुनः उसका खोया सम्मान उसकी जगह वापस दिलाना है। बचपन में बट सावित्री की पूजा में जब गुलगुला चढ़ाकर माँ खाने देती, हम ना समझ बच्चे उसकी बाटी बनाकर यानी कंचे बनाकर खेलते और खेलते ही जाते जब तक वह फट ना जाए। जब माँ और काकी की नज़र हम बच्चों पर जाती, जो जाट लगाई जाती, जो गुस्सा उनका होता, तो कहना ही क्या। आज भी वह डांट पुराने समय की मधुर यादें तरोताजा कर देती हैं। गुलगुले छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर भारतीय राज्यों में भी अक्सर पूजा पाठ त्यौहार या विशेष मौक़ों पर बनाए जाते हैं। पंजाब में तो इसे पूड़ा कहा जाता है और झारखंड में विशेष समुदाय वाले इस गुलगुले को रागी के आटे से बनाते हैं और फिर भी वह उतना ही स्वादिष्ट और मनभावन लगता है जैसे हमारे यहाँ आटे का गुलगुला बनाया जाता है। गुलगुले के लिए कहावतें भी बहुत बनी हैं। आप भी उन कहावतों का उपयोग करते होंगे, कभी ना कभी तो किए ही होंगे, जानते ही होंगे। गुड़ खाना पर गुलगुले से परहेज करना, यह तो बड़ी आम कहावत है। यानि गुड़ तो खाते हैं जनाब, पर गुलगुला खाने से मना करते हैं। अरे ये भी कोई बात हुई क्या। और वृहद अर्थों में एक काम करना और उससे संबंधित कम लाभ के कामों के लिए मना कर देना कि भाई हमें तो इसमें लाभ ही नहीं है तो हम क्यों खाएं। तो यानि गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज करो। किसी ज़माने में हमारा गुलगुला इतना मानदान वाला था कि उस पे कहावतें बनी और वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी होने लगी थी और जिसे देखो हर दूसरा आदमी इन्हीं सब खाने पीने की सामग्री वाले कहावतों का उपयोग करते मिल जाता। तो बहन, हमें तो हर मौसम में गुलगुला खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है यह तो आप ही जाने, या हमें भी पत्र लिखकर बताइए। हमें अपने पारंपरिक व्यंजनों का विशेष ध्यान रख के नई पीढ़ियों को उन्हें खिलाना चाहिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रही थी हास्य वार्ता गुलगुले। वार्ताकार थी श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव। और अब बहनों, समय है फिल्मी गीतों का, तो आइए आज सुनते हैं कुछ ऐसे फिल्मी गीत जो रोमांटिक भी हैं, मनोरंजक भी हैं और अंदाज में थोड़े शरारती भी। बात करते हैं सन 1991 में प्रदर्शित पत्थर के फूल फिल्म के इस गीत की। रवीना टंडन और सलमान खान का ये अंदाज लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसी अंदाज में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: अगला गीत एक दूजे के लिए फिल्म से सन 1981 में प्रदर्शित फिल्म के इस गीत के लिए शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें एक बार फिर लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की है। रति अग्निहोत्री और कमल हासन पर पिक्चराइज ये गीत उनके शरारती अंदाज के कारण हर युवा दिल की धड़कन बन गया। आइए सुनते हैं।
1: हिंदी कविता है ना?
2: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

ये था महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत के लिए संगीत सलील चौधरी का है और फिल्म का नाम है परख।

AIR at 90. चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म है बरखा।

0: शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फिल्म मधुमती के इस गीत को संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं।

0: विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए

0: शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक

0: तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

100 डेज। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। शब्द रचना रविंद्र रावल की थी और संगीत था राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजों में। पीयूष मिश्रा के लिखे इस गीत के लिए संगीत सलीम सुलेमान का है और फिल्म का नाम है आजा नचले।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे

0: बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मोर करा।
1: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
0: ता काखर बात करत हस?
1: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
0: वो कैसे सुमित?
1: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
0: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
1: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
0: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह और हमसिका की आवाजों में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत प्रीतम का है और फिल्म है एजेंट विनोद।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार यानी कल 29 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय रहेगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 29 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद लीजिए सुनिए अरमान मलिक की आवाज़ में अजहर फिल्म का गीत, जिसे लिखा रश्मि विराग ने और सुरों से सजाया अमाल मलिक ने।

असीज कौर और राहत फतेह अली खां की आवाज़ में अभी आपने सुना रश्मि विराग का लिखा गीत। संगीत तनिष्क बागची का था और फिल्म सिम्बा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 4 बजे आपकी सेवा में इसी मीटर्स पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग

0: उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूं उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब से कुछ देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जेमिनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim Police in maintaining law and order and in disaster management. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
0: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज। द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
3: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to program.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं प्रियांशी भटनागर आपके साथ कार्यक्रम मन भावन में। हमारे सभी अजीज श्रोताओं को ईद अल अजहा की भी मुबारकबाद। तो आज हवाओं में एक रौनक है और दोपहर की इस लय में आपके मनपसंद गीतों की सुरीली माला के साथ मन भावन समर्पित है उन भावनाओं को, उन यादों को जो हर गीत के साथ फिर से मुस्कुरा उठती हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई छोटा सा संकल्प या स्नेह भरा संदेश अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपने नाम और शहर के साथ। हमारा ईमेल पता है

fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868867535 पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं 9868867535 यानी 9868687535 पर। क्या पता कहीं अगला मनभावन पल आपके ही पसंद से सजे।

संगीत की इस रोमांचक लहर के बाद आइए अब देखते हैं आपने हमें क्या क्या संदेश भेजे हैं और कौन कौन लिख रहा है। मोर टक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका हमें लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता भी जुड़े हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीवा और दानिश अंसारी। गोला बाजार से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

हमारे साथ जुड़े हैं। आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं। इनकी फरमाइश पर चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी ने ईद मुबारक कहा है हमारे सभी श्रोताओं को और अपना फरमाइशी गीत भेजा है, तो आइए सुनें।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइशों में एक गीत बार बार आया है, अगला गीत वही सुनवाते हैं आपको। फिलहाल आपके संदेश भी पढ़ लेते हैं। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक ने भी इसी गीत की फरमाइश की है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, इन्होंने भी अपना फरमाइशी गीत भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और अपना गीत भी लिख भेजा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान और आबाद भी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है। और अनीता वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ दिल्ली पीतमपुरा से। प्रहलादपुर गांव से, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अब कहां से लिख रहे हैं ये तो लिखा है पर आपका नाम नहीं मिल रहा, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं गीत मुझे मिल गया बहाना, लता जी की आवाज में।

तो आइए श्रोताओं, अब एक बार फिर आपके संदेश पढ़ें। फाजिल्का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश जी ने लिखा है हमें संदेश, रजत और बेबी करिमा के साथ। दिनेश सोलंकी जी लिख रहे हैं राजस्थान से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष के साथ लिख रहे हैं हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला गीत और संदेश हमें मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी का, जिला खरगांव सनावत मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र जी और राजकुमार बुराना जी और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये मधुर गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूँ कार्यक्रम मन भावन में आप सभी के मनपसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर fmgoldair@gmail.com पर, वरना हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं 9868687 यानी 9868687 पर। तो श्रोताओं, आइए अविलंब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आपके भेजे हुए इस गीत के साथ।

गीतों की इस मधुर छाप के बीच आइए अब शामिल करते हैं आपकी बातें आपकी शहरों की खुशबू के साथ। देखते हैं आज और किन श्रोताओं ने हमें अपनी मन की बात लिख भेजी है। अलीपुर दिल्ली से मोनू पराशर जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमें लिख रहे हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी, इनके साथ हैं एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं हमें हिसार से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम जी, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा हमें लिख रहे हैं। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का। ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत

इन्होंने भी अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है महेश बुहाड़ा जी का, अजमेर राजस्थान से। सभी श्रोताओं और समस्त देशवासियों को ईद मुबारक लिखते हैं और अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है, आइए सुने। फिल्म दुल्हन एक रात की और आवाज है रफी साहब की।

संगीत ने तो माहौल सजा दिया, अब आइए आपके संदेशों में भी छिपी भावनाएं पढ़ें। कोलगांव से पांडु चंदन जी, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडु रंग कुंभार जी ने हमें संदेश लिख के भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहारी कॉलोनी नई शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है और अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु संस्कृति और

और उसने भी हमें अपना मनपसंद गीत लिख भेजा है। संदीप मकरजी ने हमें संदेश भेजा है ज्योति मकरजी के साथ, इनके साथ हैं मन्नत भ्रत कमल साहनी, लिख रहे हैं हमें पिंगावाला चौक जालंधर से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। फैज अहमद शाकिर और सबीर ने हमें संदेश लिख भेजा है, कर्नाटक से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत धन्यवाद। मंगल वेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम हमारे साथ जुड़े हैं। राजौनी जिला महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और सभी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। अग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से। और संदेश हमें प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर निर्वेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाकर हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं निर्मला विशाल। और मकलापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेरकर हमारे साथ जुड़े हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयसा, जोया और जैनब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये गीत आप सभी की फरमाइश पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युवावाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यह जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, और रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में। आखिरी चरण है कार्यक्रम का, तो चलिए आपके संदेश भी जल्दी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। छीपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री जुड़े हैं हमारे साथ। दिग्दर्शन और कविता गौर जुड़े हैं मेरठ कैंट से। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू जुड़े हैं उत्तराखंड से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव जी, तुषार देव जी, डॉली बेबी, पूजा और राधिका जुड़े हैं हमारे साथ। कहां से जुड़े हैं? छत्तीसगढ़ से। फरमान सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। और विजय पाटिल जी जुड़े हैं महाराष्ट्र जालाना से। शेर सिंह राजौड़ा जुड़े हैं हमारे साथ शकरपुर दिल्ली से। और बुंदेली रेडियो पर कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा रामपाल यादव। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल जी, ईशान और पूजा हमारे साथ

रहे हैं राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेनु दिव्यांशी आराधना रौनिका चंद्रेश ये जुड़े हैं हमारे साथ जयपाल यादव जी और इंद्रपाल यादव जी के साथ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ऐसे ही संदेश भेजते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। येसुदास जी के इस गीत के साथ प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये मैं एक प्योर नॉस्टेल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल

0: आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइन हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है। और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप, आप, आप, आप, आप, आप, आप, आप, आप

0: अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं, एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, इसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे

0: या बहुत डिसिप्लिन थे, और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था। आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक
0: अलग
1: अलग
0: तरह से
1: अलग
0: निखर
1: अलग
0: कर आता
1: तरीके
0: है।
1: का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: एडिशनल
1: अपने,
0: तैयारी जिसे बच्चे
1: हाँ
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं कई
1: मशक्कत नहीं करनी
0: फोर्सेस ज्वाइन
1: पड़ी।
0: करने से
1: उसके
0: पहले।
1: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी
1: जी
0: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया, और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए, और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका होनियार, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन

0: या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को एक अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना।
1: क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडर अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है।

0: इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स हैं, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई, तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और सीआरपीएफ ने मतलब सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में, तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं, तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या
0: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे, ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेट

0: डायरेक्शन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
1: जी,
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी, तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था, तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें, तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं, तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की, तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है।

0: ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं. आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में. एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर. आप एक सोल्जर हैं. आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है. तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए. तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है. आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है. तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है. तो मैं और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है. आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा.
0: शायद समझना
1: जी
0: मुश्किल है, और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत,
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज़ जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि

0: हमारे जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी, 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो FM रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको

0: पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ
1: एक मैं अब अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीत माला लेकर आते थे,
0: हाँ
1: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी। हम देखते थे
0: हाँ
1: और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या
0: हाँ
1: गोल्डन
0: हाँ
1: वॉइस थी उनकी।
0: बिल्कुल
1: तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस
0: बिल्कुल
1: मौके के
0: बिल्कुल
1: लिए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: अब मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
0: बिल्कुल
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है। जी
1: निसंदेह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से स्टूडियो
1: धन्यवाद
0: में आने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, लक्ष्मणगढ़, सायर, मानपुर, लंगड़ासाण, ललितपुर, सरगा, पेटला, भरतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 93 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या

0: 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधा पारा, लालडी, झुनकी डी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:05 हुए हैं, अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे। आज रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हुसैन बख्श का गाया राग राजेश्वरी में ख्याल सुनिएगा। ये फौजी का घर है, ये नाटक आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर, लेखक और निर्देशक विनोद कुमार। आज रात 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में पंथी गीत के कलाकार होंगे करमचंद कोसरिया और साथी। आज शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा जल संरक्षण करो भविष्य बचावाओ। 7:30 पर किसान वाणी में आज के सलाक्रम का विषय होगा टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन, जानकारी देंगे डॉक्टर नरेंद्र लागपाले और साथ ही होगा आज का प्रश्न और गीत संगीत। आज शाम 6:30 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे लखन नेताम और साथी। और अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 5:10 पर अपन गोट का विषय होगा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में अपन गोट का विषय होगा जिम्मेदारी संग बुताकरण और क्रम होगा अंतस के आरो और हेलो मितान का। चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

और अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर समय होगा हमारा दैनिक प्रसारण सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का।

प्रस्तुत करता होंगे अंकुर शुक्ला। सुबह ही 8:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। सुबह 9:00 नवा बिहान कार्यक्रम में आम के फल से शरीर का पोषण विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र राजन से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता होंगे नेमीचंद साहू। सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे चंद्रकांत गंधर्व। सदाबहार नगमों का आनंद आप लेंगे कल सुबह 11:30 पर। दोपहर में 12:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी आशा भोसले। सुबह 11:05 पर प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में भोजपुरी गीत के कलाकार होंगे गणेश पंडित और साथी।

कल शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में एक रमाजकल का विषय होगा, छोटी शुरुआत बड़ी जीत। एक मुलाकात क्रम में रंगमंच और अभिनय अभिनेता एनएसडी वाराणसी के श्री अमितेश तिवारी से लेगी भेंटवार्ता आप सुनेंगे और साथ ही क्रम होगा अपनी पसंद का। आज शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा, खेती माँ ड्रोन अपनावन लागत घटावाओ। हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा, भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। जानकारी देंगे नायब तहसीलदार रायपुर के श्री सौरभ कश्यप। संचालन राजेश यादव का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। साथ ही होगा आज का प्रश्न और लोकगीत। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आप सुनिए युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी।

0: जिम्मेदारी ला ओढ़ के जेखरमन बूता मा रमे रही थे
1: ओकर जिंदगी मा सदा सुख समृद्धि के दिया जलत रही थे।
0: कर्म हा ये जग मा सबले बड़े हवा कबू झन एमा मानव हार
1: मेहनत और ईमानदारी ले गड़बो नवा नाव संजय की युवानी ला धर के आए हवन आप मन के दू मयारू संगवारी मैं दामनी सेन
0: और मैं हूँ तुहर दलरवा सुमित तिवारी त झोका संगी हूँ हमारे माया भरे
1: जोहार
0: का बात है दामनी मैं हाँ जतका बेल आए हमो
1: हाँ?
0: तोला देखा था कि तह कोनो किताब ला पढ़ा था वास तहाल फिर पन्नल पढ़ा था वास तहाल हाँ? फिर पढ़ा था वास
1: हाँ संगवारी
0: काय किताब ला पढ़ा था तेला तो बता देते हैं
1: मैं है ना जिम्मेदारी संग बूता कैसे करन हमला अपन जिंदगी में उही किताब ला पढ़ा था सुमित
0: बिल्कुल भाई किताब के संग संग अनुभव तको में बहुत काम आते
1: हाँ?
0: फिर बड़ सुघर किताब ते पढ़ा था वास हाँ? तोला देख के ना ऐसे लागत है कि तोर मन में बिकट अकन सवाल है एती उती कुदा थी की
1: सिरतोन कहा था सुमित ते तो
0: अब बता घलो डर का सवाल आए
1: सुमित जब कोनो मनखे ला कोनो भी बड़का बूता देते
0: सिरतोन
1: तो ओला सही ढंग और ईमानदारी ले कैसे करना चाहिए
0: बिल्कुल भाई ईमानदारी लोला हमला कैसे पूरा करना चाहिए एला हमला सोचना चाहिए है नहीं
1: हाँ?
0: संगी हो रोज के जिंदगी में जिम्मेदारी संग अपन बूता ला करना चाहिए माने कि अपन हर नान्हे नान्हे बूता ला ईमानदारी लगन बेरा मा करे के प्रयास हमला करत रहना चाहिए
1: माने कि जिम्मेदारी संग बुता हमला अपन कार्य के प्रति कर्तव्य वचन और बेरा में पूरा करे के सीख सिखाते ना
0: सिरतोन संगी भाई जिम्मेदारी के पहली सीढ़ी ही आए
1: हाँ?
0: कि बेरा में हम अपन काम लेना पूरा कर लन
1: हाँ?
0: काबर की आज के बुताल हमन काली ऊपर टार देबो ना
1: हाँ हाँ?
0: तो बूता बोझ बन जाते
1: हाँ?
0: और फिर बाद में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती
1: पोट के संगी जब हमन कोनो बूता ला दे जाते ना तो सिर्फ एक ठम बूता नहीं रहे वो हमार ऊपर भरोसा और विश्वास रहते और जब उही बुताला आधा अधूरा छोड़थन वो बुता हर टालथन तो सियान बनला कबू नहीं भावाए
0: तभे तो सियान मन कहते
1: हाँ?
0: कि बुता सुघर रही तभे हाँ? संसार मा जस मिली
1: और जैन मानुस

0: अपन जिम्मेदारी ला समझते, समाज में ओकर बड़ मान रहे थे और लोगन मन ओकर ऊपर भरोसा घलो करते।
1: सिर्तुन संगी हो, आप मन हा अपन बूता ला ना मेहनत और लगन ले कराओ, काबर की आप मन के जब नाव चारों मुड़ा बगड़ी ना तो हमार घर परिवार समाज और देश राज के ना बड़ सुघर मान गुण बढ़ते।
0: अब तुला पता है
1: काची,
0: जिम्मेदारी है केवल खाना और कुर्ता तक नहीं रहा है, बल्कि हमार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास ले घलो जरूरी थे ना।
1: सिर्तुन भाई संगवारी हो, जब एक लड़का हा जन्म लेते ना तो ओखर जन्म ले लेके ओखर युवा बनत तक दाई ददाओ परिवार के कई ठन बड़का जिम्मेदारी होती और जिम्मेदारी ला सरलग हमारे घर परिवार हा ओला पूरा करते। फिर एमा कतकोन मुश्किल के सामना तको करेल पड़ते संगवारी हो, ऐसे नहीं है कि यह कोनो सीढ़ी है अब एक सीढ़ी चढ़े तहल हमारे कारज हो गए। रोज एक नया पड़ाव हमला देखे बन मिलते, रोज वही जिम्मेदारी के साथ ओला आगे बढ़ाएल पड़ते। तेने ले हमारे घर वाले मन से हमला सीखना चाहिए, हमारे दाई दादा हमारे सियान मन के अनुभव लेना चाहिए और अपन रद्दा ला सोच समझ के अपन कदम में उठाना चाहिए और जिम्मेदारी संग अपन काम बुतला करना चाहिए।
0: जैसे लड़का ला माया अपनापन और सुरक्षा के एहसास करावन, सत के रद्दा में चलना, अपन ले बड़का मन खेला सम्मान कर, अनुशासन और ईमानदारी ले जिंदगी घलो जीना सिखाते ना।
1: तबे तो कहते संगी, जेन मानुसा अपन जिम्मेदारी ला हासा थासा संभाल थे ओकर घर में कभू संसो नहीं आवे।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगी हो, आज बड़ मयारुक दिन आए, गुरुवार। वैसे तो गुरुवार ला लक्ष्मी माता कहते, फिर संग मा हमन मितान के दिन घलो के थन, काबर की हमर मितान हमर बर सबले बड़का है। ये नता कृष्ण सुदामा कस आरुक है, औ जब ओखरले भेंट हो जाते ना तो ओ भाव के का शब्द में बखान करन। आज हमन संगवारी मन तिरंग गोठिया के खुश हो गए, तो चलो सुनथन सुमित के संग हमर श्रोता संगवारी मन के गोट बात। शुरू करथन क्रम हेलो मितान।

0: फोन के घंटी बजीस त मन ह पहिली दौड़े ल लगथे, गोठियाए बर अपन मितान तीर अंतसहा झूमे ल धरथे। ऐसन मया है हमर का कहन, तन मन धन सब मितानी में ही लगे धले थे। त संगी हो, आज हों मैं सुमित तिवारी, आगे हों आप मन तीरा सुघर सुघर मया दयास दुख सुख गुठियाए बर। और घंटी के रिंग है तो अब्बड़ अकन बाजत हावे, तो चलो सुनथन कौन संगी के फोन पहली आवत है तेला।
1: हेलो
0: हेलो, जय जोहर मितान।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोला था मितान, कहाँ बोला था?
1: पवन कुमार सेन बोला था, भैया घंटी पंडरिया ले, आप मन के नियमित पुराना श्रोता।
0: बहुत बहुत सुघर भैया,
1: कहा कि थे युवाणी कार्यक्रम के थे एकदम नियमित पुराना श्रोता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: और एक सुने बिना मोर मन नहीं मारे, और यहाँ पाती भी नहीं लिखे बिना तक मोर मन नहीं मारे भैया। अब बड़ ध्यान लगा के युवाणी कार्यक्रम में सुनता हूँ, और सुना सुना आज 58 साल की उम्र ल पार करत हूँ भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आप मन सब श्रोता मन के हमर बार मया हरे मितान।
1: जी भैया जी भैया।
0: और का चलत है मितान अभी?
1: अभी बस ऐसे घरे रखाई चलत है, का है अब गर्मी है एकदम तेज, धूप अब आ गए और नौ तब तक मौसम भी चलत है, तो 10-11 बजे तक हम घर में अपन घुसर जो अपन भी।

0: रेडियो का आनंद लेवत रहथन, सुना सुनत अपन टाइम पास करत रहथन अपन घर में।
1: नहीं नहीं बढ़िया, रेडियो संग बढ़िया अपन समय व्यतीत करत हो नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, रेडियो हमारे परम मित्र है, उस खास करके मोर जिंदगी के सबसे उजागर कोनो कार्यक्रम हवे तो मोर युवाणी कार्यक्रम हवे भैया, एकरे मार्गदर्शन ले आज ले जिया था, एकरे मार्गदर्शन ले चला था मैं।
1: तो युवाणी में कौन कौन से क्रम आप मतलब बने लगते?
0: जम्मो क्रम बने लगते, काखर बारे में का बोलो, सबो हर काबिले तारीफ लिखे भैया आप मन के कार्यक्रम
1: जी। तभी कौन सा गाना सुनना पसंद करूँ मितान आप?
0: अब आज का है द्वारका यादव सरस्वती निषाद के एक सुंदर गीत है भैया, आँखी माँ झूले ओ नैना माँ झूले ना मन मोहनी तोर चेहरा, आँखी माँ झूले ना, आँखी माँ झूले ओ नैना माँ झूले ना मन मोहना तोर चेहरा, आँखी माँ झूले ना।
1: बड़ सुघर मितान, चलो सुनथन आप मन के मन पसंद सुघर अकन गीत लप।

0: हेलो मितान।
1: हेलो मितान।
0: जोहार मितान, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
1: मैं भागवत प्रसाद सिन्हा बोला था, भैया गांव नारजी पोस्ट ऑन भिलाई 3 जिला दुर्गले
0: जी। और सब बने बने मितान?
1: एकदम बने बने भैया।
0: तो कहाँ चले थे मितान आपन?
1: एकदम बढ़िया, कुशल मंगल है भैया। गर्मी का आनंद लेते हैं, वैसे सब मौसम के आनंद लेते भैया। हर मौसम अपन अपन अंदाज दिखाते
0: है। सही बात है,
1: वैसे सबसे सुरक्षित रहना चाहिए, सब सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहना हर मन के काम है, कर्तव्य है ना भाई।
0: गर्मी में काका बने जाल टाइप के काका बनाता हो खा पिए भर के?
1: नहीं, गर्मी में का बनाओ ये, बस पानी पी 24 घंटा वही काम रहते हो, कहीं बनावे कोई नया सिस्टम नहीं भैया।
0: बोरे बास ये मौसम बड़ निक लगते
1: जरूर भैया, बोरे बासी निक लगते की के, लेकिन आजकल कोई देखे कहा मिलते, हम जरूर बोलते बोरे बासी खाना चाहिए की के, लेकिन खाते कहाँ भैया कोई आजकल। तो सब नंदा गया, पहले कहा भैया खूब बोवन चावल थार थार सब चावल रहे तो मजा आवे। दो दिन में बासी खाते तो कुछ नहीं है, तो भैया सोसाइटी चावल खा सब एक दिन में बासी सिद्ध किया जाते निचट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी के दिन में आप मुख्य रूप से का खाना ज्यादा पसंद करता हूँ मितान?
1: रोटी वाले हम भैया, रोटी चावल खाता हूँ बस, और कोई चीज खाना पसंद नहीं करो भैया।
0: बिल्कुल। तो का गाना सुनना पसंद करो मितान आप?
1: साधराम मराबी संगवारी की आवाज में एक गाना है भैया, करुहरे करेला बेरी तरे मा मीठा थे, करुहरे करेला बेरी तरे मा मीठा थे, लसन गोंदली चुनु छैया हरदी हारंगा थे, बकरी के लाल मिर्चा लई कला रोवा थे, बकरी के लाल मिर्चा लई कला रोवा थे। ये वाला गाना है भैया,
0: बड़ सुघर मितान। चलो आवाज सुनता ना आप मन के मन पसंद सुघर के गीत ला, फोन करे होते।

0: हेलो मितान।
1: हेलो मितान।
0: जोहार मितान, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
1: जोहार मितान, मैं गांव बनबगेरा जिला राजनाथ गांव ले आप मन के मेहरू संगवारी योगेश सारा बोला था भैया। वो सबो संगवारी मतलब मोट डाल ले, जय जोहार, राम राम।
0: आपो मतलब जोहार। और का काम बोता चला थे मितान अभी?
1: भाई के मितान खेती किसानी के कांटा खुट्टी चला थे ले सही। साथ में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मितान, क्रेशर प्लांट है वहाँ, मुनिम काम करता हूँ, मुंशी काम,
0: मैनेजर काम मितान। हाँ हाँ।
1: और रेडियो है बाजू मारे रहते दिन भर आकाशवाणी रायपुर के आनंद उठा रहे मितान।
0: बिल्कुल भाई, तो मौसम के तो व्यवस्था दिखते छावा है
1: भी नौटप्पा लगे है मितान। हम 25 मई से तो बिल्कुल नौटप्पा अच्छे तपत है कि मत कुछ 9 दिन ले।
0: गर्मी के मौसम के आप मन के काम में का फर्क पड़ा, तो वही के हूँ।
1: बिल्कुल काम धाम में बिल्कुल फर्क पड़ा थे भैया, जैसे काम धाम वो हिसाब से नहीं हो पाए जो हमला मौसम के अनुरूप होते। गर्मी में बिल्कुल अपन आपला बच के रहना चाहिए, काला चश्मा, टोपी, गमछा, स्कार्फ जैसे भी है, और पानी पी के चलना चाहिए घर से। और मैं कसम मितान फ्रिज के पानी ला कम करके, हमन अक्सर फ्रिज की जाने पानी पी देते हैं, मगर हमला देसी पद्धति से जैसे मटका वटका रहते घर में ना, ओकर पानी पीना चाहिए मितान।
0: बिल्कुल भाई।
1: और जैसे कोई डहन ले आवा था ना, तो डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, 10 मिनट रुक के उठा के पानी पीना चाहिए, एक से स्वास्थ्य खराब नहीं हो मितान।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के मौसम में विशेष ध्यान रखे की जरूरत है, कहा था नहीं।
1: खान पान में बिल्कुल हमला संतुलित भोजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दही है, मही है, घर में हमारे होते नींबू पानी है और गन्ना रस है, एक उपयोग करना चाहिए मितान। और भोजन के मात्रा ला बिल्कुल कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से गीत सुनना पसंद करूं मितान आज?
1: धरती के सपूत बेटा भाई मोर किसान और जम्मू किसान भाई मल्ला समर्पित है भगत साहू के स्वर में मितान।
0: बिल्कुल मितान, फोन करे बार देखे बार बड़कन धन्यवाद है, लवा सुनथन आप मन के मन पसंद सुघर अकन गीतला।

0: हेलो मितान।
1: हाँ हेलो मितान, जय जय जोहार।
0: जय जोहार मितान, कौन बोला था भाई? कतेक सुघर आवाज लगा था आप मन के।
1: हाँ मैं छत्तीसगढ़ नाम गांव ले वीरेंद्र गंधर्व बोला था
0: जी। ओ मितान बताओ का हाल चाल है, सब बने बने हवे?
1: हाँ सब बने बने हैं। मैं नेत्रहीन शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ छोटे छोटे लड़का मन ला।
0: बड़ ये तो बड़ सुघर कारज है मितान।
1: हाँ वो गर्मी छुट्टी है अभी।
0: हाँ
1: और जैसे आकाशवाणी लगे से सब जानत हो के 90 बच्चर के हो गए आकाशवाणी हमार।
0: बिल्कुल भाई।
1: हाँ एक उपलक्ष्य में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है मितान, कहो।
1: 90 बच्चर के महतारी मनोरंजन ज्ञान के कोला बारी, मोबाइल में हो या रेडियो सेट मा, घर में हो के खेत मा, घर आंगन बिंदिया युवाणी, सबके दिलौरी आकाशवाणी।
0: बड़ सुघर मितान, बढ़िया गजब के आप मन के कविता अंतस छूट रही भाई, और पूरा युवाणी के सफल ला बता रही।
1: हाँ जी
0: बड़ सुघर मितान, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करूँ?
1: रेडियो से खोई से।

0: पर कि मैंने 1975 ले रेडियो ला सुना था
1: हाँ हाँ
0: और जुड़ना सोता हूँ ता जो कुछ मैं करा था ना तो मोला रेडियो हा अच्छा बोले पर सिखोई इस कविता कहानी गढ़े पर सिखोई
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ता जो कुछ मैं आज हूँ रेडियो के बल पे हूँ
1: बिल्कुल मितान ये तो भैया आप मन के माया हरे प्रेम हरे जिन अतेक सफर बढ़िया पूरा कर चुके हैं हमारे आकाशवाणी हा ता कौन से गीत सुनना पसंद करूं मितान आप
0: मोर नगरिया खास में है रांधे बुझ भगार के गजा मूंग लाल भाजे गोंदी के डेर
1: मोर नगरिया
0: खास नहीं है रांधे भूंज बघार के
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल मितान फोन करे हो तेखर बार बड़कन धन्यवाद है और चलो सुनथन आप मन के सुघर अकन मन पसंद गीत ला

0: जोहार मितान।
1: हेलो मितान।
0: जोहार
1: जोहार मितान। जय जोहार।
0: कौन बोला था मितान?
1: मैं हाँ छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर रे मोहनलाल देवांगन मास्टर मोहन बोला था मितान।
0: बड़ सुघर मितान, आपके आवाज तो एकदम जोरदार है मितान।
1: आपके भी कम नहीं है मितान, आप तो आपके आवाज के जादूगर मितान।
0: बस बस मया प्रेम हवे भाई, संगीत जोहरिया मंत्री गोठियाबे ना तो अंतर से जुड़ा जाते जी।
1: ठीक क्या था, ठीक क्या था। आओ बिल्कुल क्या है, देखो यही तो कहना है, जब रेडियो के माध्यम से अगर सब जन इसे मिलते थे, मुलाकात होते थे, गोल बात होते थे, तो मन हाँ जो है ना आखिर में बहुत अच्छा लगता है एकदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल मित्र,
1: गर्मी के आसार भी ऐसे लगते कि कम होते ऐसे लगते।
0: कौन से गीत सुनना पसंद करूँ मितान आप?
1: अब ये गर्मी के जब बात होते है बैठा राम साहू के और बोल आ गए गोमरा मा पाँव जरे ये वाले जो करते मितान।
0: बिल्कुल मितान, बड़ सुघर फोन करे बात एक बार अंतसले धन्यवाद। चलो सुनथन आप मन के सुघर अकन ये गीत ला।
2: जीवलेवा घाम जरे

0: हेलो मितान।
1: हेलो,
0: जोहार मितान।
1: हाँ जोहार मितान, जोहार।
0: कहाँ ले बोला था भाई?
1: शेषुराम साहू फागुन दास।
0: जी जी,
1: अब बड़ खुशी लागत गया।
0: हमू वाला बड़ा खुशी लगा थे मितान, आप मन के फोन भारी दिन में लगे तीस लगा थे।
1: हाँ पहले घाव लगा हूँ, पहली बार लगी है और अचानक लगा तो लग घलो गए बने लागी है।
0: पहले घाव गोठिया था तो हमला हूँ वाला बढ़िया आनंद लगा भाई।
1: और तुम्हारे तो कार्यक्रम तो सब बने लागे, सब फोन सुनत रहते मितान, सब कार्यक्रम बने लागे, गुप्त लागे बने। और काम बुता में रोजगार गारंटी में जाता मितान, ये सुबह से जाता है और वही काम चला हफ्ता भर हो जाते और वही काम चला थे। अभी एक हफ्ता चल ही कहा थे संगवारी मनसा रखा है और ये देख खेती किसानी गलो करते हैं तो अभी नोरित गलो वो हैं तो घर के मना अलग पे हो गए तो दो तीन ठन कविता कहूँ कहा थे मितान।
0: बिल्कुल सुनावा मितान, स्वागत है।
1: काने माँ बाली गोरा गोरा काल, आकाश नीला सुन था पूरा घर परिवार, बच्ची में बासी कटोरी में साग, आकाश नीला सुन था सुबह से शाम तक, पानी ला पिए पियत भर ले, आकाश वनीला नहीं छोड़ेंगे मोर जियत भर ले, पेपर के पत्ता डोलता रहेगा, आकाश वनी को हम सुनता रहेगा, आलू ते आलू पहाड़ी आलू मोर रेडियो रहता है दिन भर चालू। मैं लिखे लिखे सॉन्ग से मोर डाल ले मितान, मोर लिखे सॉन्ग थे कविता के सॉन्ग थे।
0: बड़ सुखर मजेदार कविता है मितान आपके, तो कौन सी गीत सुनना पसंद करूँ आप?
1: आपसे सुना दो मितान, यही गाना है मन।
0: बिल्कुल मितान, आप फोन

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: धामनी,
4: हाँ?
3: अभी संगवारी मन किरा बस सुघर सुघर गोड बात सुनात रहे हैं।
4: हाँ।
3: है ना?
4: हाँ?
3: तो अब हमार संगवारी मन के अंतस के आरो पढ़े के बेरा हो गए है
4: सिर तुनवा
3: ना। तो कौन संगवारी अपन अंतस के आरो भेजे भाई बता दे।
4: संगवारी मन लुकाओ पाली छतवा ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला निहारिका पंकज सूर्यवंशी मन
3: का कहा थे संगवारी है।
4: संगवारी मन कहा थे, ए जिंदगी में बने नेक सुघर काम कर लेवा, अभी घाम बिकट जनावा थे, चारों डहार कुआं तरिया नरवा सबो सुखा गए, चिरई चुनगुमर गाय गरवा मन सबो पानी पिए बर एती होती भटकत हावे। तो अपन घर के छत में कुछ जिनिस में पानी और दाना रख देव, घर के आगू में घलो कोठना या कुछ में पानी रख दो, जेखर ले गाय गरवा मन ला पानी मिल सके।
3: भाई पानी के बड़का बड़का कारज है संगी, ये तो आप मन के पाती हमला बतावा थे और हमला बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपके पाती मां संगवारी हो बड़ सुघर अखन विचार दिखा था भाई परोपकार के, जिला जिला हमला पढ़ के बने लगी सब पाती भेजे होते खबर अंतसले धन्यवाद आगू औ पाती पठवत रहू। दूसरिया पाती का खरे नाम नी?
4: दूसरिया पाती चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विनकी नानको, रविन्द्र रौनक सेन मन
3: का कहते संगवारी मन।
4: संगवारी मन कहा थे, हमार छत्तीसगढ़ की माटी जेखर सौंधी सौंधी खुशबू बड़ महमाते, और जेखर भुइया मा आनी बने की चिरई चुरगुन गाय गरवा के बसेरा बड़ सुघर सुघर रुख राई, जेखर कोरा मा हमन जन्मे धरन, हमार ले भागवानी कोनो नहीं है, पर आज के कई प्रकार के विषम परिस्थिति ले गुजरत हावे, हमार धरती बिन मौसम के बरसात कभू घाम तो कभू बदली, श्रोता मन ला घलो दिक्कत हो जाते, जेखर मारे हम सब ला मन खिला झेले पड़त है, जेखर जिम्मेदारी कोनो औनो हरे, एखर जिम्मेदारी हमन हरन। और ए पाती ला भेजरे साविदे पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीप रिमझिम गुप्ता मन हा।
3: रुख राई है धरती के श्रृंगार, एखर ले बदलते हमार संस्कार, एक रुख सबो कोती लगाबो अपन छत्तीसगढ़ ला सुघर बनाबो, बड़ सुघर अकन आप मन रुख राई के बात करे हो संगवारी हो, और रुख तो हमार रुख राई हमार जिंदगी के ना बड़ सुघर आधार है, काबर रुख राई है जेन हमार सबो जरूरत ला पूरा करते संगी हो, तेखर पर हमन ला चाहिए कि जंगल हमला बचावन और संगे संग अपन आस पड़ोस तको जंगल लगावन। बने सुघर आपके विचार पठोए हो, तेखर पर अंतसले धन्यवाद हावे, आगू इसने पाती पठो हो।
4: बन बघेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा, आशा, नीलेश, नीरज, अंजलि, रोशनी सारवम। संगवारी मन कहा थे, गर्मी के दिन आते तो हमन रुख राई लगाए के गोट करते, पानी बचाए के गोट करते, जब चौमासा में पानी बरसात के बेरा आते तो थोरकिन ध्यान देथन। और ए पाती बर और संगवारी मन हावे, महामाया चौक मेगा पारा ले रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजी, दीपक, छोटू पटेल, लालपुर छत्तीसगढ़ ले मोतीलाल भिप्टे, सुशीला, मेघा, नेहा भिप्टे मन।
3: बड़ सुघर संगवारी, भाई गर्मी के दिन तो आगे हावे, ऐसे में हमला पानी के विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा ज़्यादा हम पानी पियन और अपन सेहत के विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, और संगे संग अपन आस पास जतका हमार सियान मन है तेखरो हमन अपन सेहत के उखरो मन के ध्यान रखन। आप मन अतका सुघर सुघर अंतस के आरोप पठे हो, तेखर पर बड़ा कन धन्यवाद है संगवारी हो, इसने आगू पातू पाती जो है पठवत रहू, तेखर पर हमार पता ला लिख लो, हमार पता है क्रम अंतस के आरो युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़, हमार पिन कोड है संगवारी हो 4920001, और ईमेल के माध्यम अपन पाती पठे पर हमार ईमेल आई डी लिख लो AIRYOUTH9@gmail.com, और हमारे सब्जेक्ट कोड है वायतिरा। तो काली के कार्यक्रम बता दर दामनी।
4: काली के कार्यक्रम आप मन सुनो हिंदी में, जिसमें आप मन सुनो एक मुलाकात अपनी पसंद।
3: संगी हो आज के कार्यक्रम आप मन कैसे लगी, अब अड़कन पाती लेके हमला जरूर भेजू, तेखर संग अपन संगी सुमित तिवारी
4: और दामनी सिन्हा देव अभी दा नमस्कार।

0: अभी आप युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट

निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे रीमा,
1: नेत्र चिकित्सालय
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत मल्ला मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावा थे। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ सरकार है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ला मजबूत करे बर जिला पंचायत मल्ला घलो गौण खनिज निधि में हिस्सा दे के आदेश जारी कर दे। खनिज साधन विभाग के मुताबिक गौण खनिज मल्ले मिलैया राशि के वितरण ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच तय अनुपात में करे जाही। ये निधि के उपयोग स्कूल अस्पताल सामुदायिक शौचालय मुक्तिधाम और सड़क जैसन विकास काम में करे जा सकही। मुख्यमंत्री उसने साहे कहने कि यह फैसला ले पंचायत मल्ला आर्थिक मजबूती मिली और ग्रामीण विकास काम में तेजी आई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने कि भारत के किसान मन के मेहनत के सेती देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करत श्री चौहान बताने कि यह बछर देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन ले ज्यादा है जोन पाछू बछर की तुलना में 5.3% ज्यादा है। श्री चौहान ने कहने कि 2 दिन के ये सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण पर एक रोड मैप तैयार करे में सहायक हो ही। ये सम्मेलन के उद्देश्य अवैया खरीफ ऋतु पर रणनीति में विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू करे जाही। ए बारे में काली रायपुर में खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के अगुवाई में राज्य स्तरीय कार्यशाला राखे गिस। बैठक में श्रीमती कंगाले है कहने कि केंद्र सरकार अवैया खरीफ बछर में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम ला प्राथमिकता के संग लागू करे के दिशा में काम करत है। एक बार राज्य के राइस मिल मन ला तकनीकी रूप ले अपग्रेड करना जरूरी हो ही। ओमन आश्वस्त करी है कि मिलर्स डाले दे गए सुझाव और समस्या के परीक्षण करके जरूरी प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे जाही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा अपन भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के परिचालन उत्पादन वित्तीय स्थिति और विकास योजना मन के समीक्षा करें। ए दौरान उमन संयंत्र प्रबंधन लक्ष्य निर्धारित करे सुरक्षा मानक ला मजबूत करे और उत्पादन में सुधार ऊपर विशेष ध्यान दे के निर्देश दें। पत्रकार मले गोट बात करत श्री पंडा कहने कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़ सेल और पूरा देश भर महत्वपूर्ण हवे। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद हवे। एखरले देश ला लौह अयस्क मिली और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारी क्षमता ला घलो मजबूती मिली। श्री पंडा सेल के भविष्य के योजना मन के बारे में बताने की कंपनी है अवैया 4-5 में अपन उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन ले बढ़ा के 35 मिलियन टन हर बछर करे के लक्ष्य रखे है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत अवैया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी है देश भर के अपन 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मन में बीमित श्रमिक मन के लयिका मन पर 700 सीट आरक्षित करे है। एक हर बार ऑनलाइन आवेदन करे के आखिरी तारीख 31 मई ले बढ़ा के 21 जून कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के मुताबिक ये आरक्षित सीट में योग्य उम्मीदवार के चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम ले करे जाही।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह विद्यार्थी मन ला आश्वस्त करे हे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE डहर ले शुरू करे गे नवा ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले एक प्रगतिशील साधन आए। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE अधिकारी मन के संग बैठक के बाद ये बात कहीं। CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगति और तकनीकी खराबी ला लेके श्री प्रधान ने स्वीकार करी है कि कुछ एक मुद्दा अगुआ है। ओमन विद्यार्थी मन ला आश्वासन दे है कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान जम्मू शिकायत मन के समाधान करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने भाग में मनाया जावत है। त्याग और बलिदान के ये तिहार ला मुस्लिम समुदाय के लोगन मन ईदगाह और मस्जिद मन में विशेष नमाज अदा करी। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम डहले खुदा के आदेश के पालन करत अपन इकलौता बेटा के कुर्बानी दे के सुरतामा मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल जुहा में देशवासी मला बधाई दीन है। आज महान क्रांतिकारी और चिंतक वीर दामोदर सावरकर के जयंती हवे। ये मौका में मुख्यमंत्री श्री शाह मला श्रद्धांजलि अर्पित करी। श्री शाह कहीने कि भारत के स्वाधीनता पर अपन जिंदगी समर्पित करैया वीर सावरकर के अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अटूट संकल्प के अमर कहानी हवे। विपरीत परिस्थिति में घलो राष्ट्र हित के प्रति उखर अटूट प्रतिबद्धता अवैया पीढ़ी ला निरंतर प्रेरित करत रही। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है बरसा ले पहली जम्मू सड़क के मरम्मत कर ओला गड्ढा मुक्त करे के निर्देश दिन है। रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडल के स्वीकृत निर्माणधीन और निविदा प्रक्रिया के प्रगति के समीक्षा के दौरान श्री बंसल अधिकारी मल्ले कहने की स्वीकृत काम के प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजे जाही। ओमन निर्माण काम के गुणवत्ता के संगे संग समय सीमा में पूरा कर लेला कहीं। संगे संग अनुविभागीय अधिकारी मल्ला लेके प्रमुख अभियंता तक जम्मू अधिकारी मल्ला हर मंगलवार मुख्यालय में रहे के घलो आदेश दिन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के संशोधित तारीख और प्रवेश पत्र जारी कर दे है। NTA के मुताबिक परीक्षा 31 मई 6 और 7 जून के रखी जाही। ईद उल जुहा के सेती तारीख में बदलाव करेगे है। NTA हा बताई है कि 31 मई के परीक्षा देवैया उम्मीदवार मन के प्रवेश पत्र जारी कर देगे है। 6 और 7 जून के परीक्षा बार प्रवेश पत्र जल्दी से जारी करे जाही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काली 29 मई ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। 3 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करही। उन्हें समारोह के पगरैती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल माई पहुना के रूप में मौजूद रही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहर ले आयोजित ये महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शन लगाए जाही। 31 मई तक चलेगा ये महोत्सव के दौरान आम उत्पादन के नवा तकनीक प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषय ऊपर विशेषज्ञ डहर ले मार्गदर्शन दे जाही। प्रदर्शनी हरेक दिन मंझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक आम लोगन बनबर खुले रही। अब थोड़ी समाचार मौसम के। प्रदेश के मौसम में काली ले बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार बताएं कि ये बेरा एक ठीक चक्रवाती घेरा झारखंड में बने हैं। उन्हें एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश ले आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। एक असल प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। काली उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में हवा गरेर और गरज चमक के संग वर्षा होने की संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में करा गिर सकत है। काली ले अवैया 4 दिन तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित है। आखिर में प्रमुख

0: समाचार एक घा फेर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत में मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हुई इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश की आने आने जगह में मनाए जावा थे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावा थे। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरु मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्तितः। गृहमंत्री अमित शाहः गांधीनगरे जनसभायां अवैध प्रवासीनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधु तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्। यतोहि विधानसभायां 37% अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतिना स्वकीयम् अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23-2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री संजातः। इतः पूर्वं सः 23-18 यावत् मुख्यमंत्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमंत्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमंत्रित्वेन वित्तमन्त्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्तासङ्घर्षः समाप्तः। अत्रान्तरे राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23-2000 विधानसभानिर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत् विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपद प्रबंधने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर

0: नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिकरूपेण पूर्णसाक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोकनगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता। यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासिनां अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिकत्रिंशत् कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्व आरक्षक क्रीडानां, अग्नि क्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकनप्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत, तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः,

0: आप सुन रहे थे लोक संगीत, आज इसमें कलाकार थे लखन नेताम और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज की मुख्य समाचार। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश।

0: समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाली ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संयंत्र प्रबंधन को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और उत्पादकता में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पंडा ने कहा कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़, सेल और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद है। इससे देश को लौह अयस्क मिलेगा और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारित क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
1: छत्तीसगढ़ के लिए, सेल के लिए और कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद है रावघाट, क्योंकि उसमें काफी रिजर्व्स हैं एंड रिजर्व्स को माइनिंग करते हुए कंट्री में अवेलेबल होगा आयरन ओर एज वेल एज भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा। इसलिए सेल का मैनेजमेंट का सारे फोकस इसके ऊपर है। ये रॉ मेटेरियल सिक्योरिटी होगा जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आ रहा है भिलाई में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: श्री पंडा ने सेल की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि कंपनी ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है।
1: सेल ने अच्छा एफर्ट्स लिया है, डिफरेंट प्लांट्स में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है एंड कहीं कहीं पर आगे बढ़ गया है, बाकी जगह में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग 20 मिलियन टन से 35 मिलियन टन में चले जाएंगे 4-5 साल में, ये हम लोग का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देशभर के अपने 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीटें आरक्षित की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसार इन आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन NEET UG परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष

नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। आज महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को

0: दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महासमुंद जिले में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के एलपीजी घोटाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर पेट्रोकेमिकल अभनपुर के संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक खाद्य अधिकारी अजय यादव और मनीष चौधरी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिले के बमनी धान उपार्जन केंद्र में हुए धान घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन केंद्र प्रभारी गंगाधर जगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1.16 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के धान गबन का आरोप है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय एक चक्रवाती घेरा झारखंड में बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने के आसार हैं।
1: मेघ गर्जन का गतिविधि जो है वो कल से प्रदेश में आगामी 2-3 दिन तक रहने की चांसेस है। कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर इस प्रभाव से तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात होने के भी चांसेस है। लेकिन कल से लेके आगामी 4 दिन तक पूरा प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की चांसेस है। गिरावट लगभग 2 से लेके 4 डिग्री होने की संभावना है।
0: इस बीच जगदलपुर में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माहौलकोट गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। और राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। चित्रपट संगीत का आनंद हम लेंगे बस कुछ ही देर में।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत का पहला गीत सुनिए फिल्म जुबेदा से अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है AR रहमान ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुमको न भूल पाएंगे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सोनू निगम, अरविंदर सिंह, स्नेहा पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं जलीस राशिद और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

0: बजरंगी भाईजान, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अदनान सामी इमरान अजीज की आवाजों में। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।
1: तू बुलाता है तेरे दर पर सर

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम मोनिका।
1: राम राम समित भाई। संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दिनो के।
0: राम राम। मोनिका, गर्मी के मौसम तो बड़ बाढ़ गया हवे।
1: हाँ।
0: संगे संग अब नौ तपा घलो चलत हवे। ऐसा में हमर मन के मन एकदम हला कान असन लगा थे,
1: है ना?
0: कोनो काम बुता में मन घलो तक नहीं लगे।
1: तोर बात एकदम सोलाना सही है समित भाई। ये मौसम हमर मन के कमर तोड़ देते। कोनो काम बुता में घलोक मन नहीं लगे। बखत मतलब हमारे शरीर में आलस बने रही थे। संगे संग कुछ खाए के मन घलोक नहीं करे। ये लगते बने पानी मिल जाए तो पानी चेप पियत रहन, कुछ ठंडा जिनिस मिल जाए तो वही खा पीलन। भाई ये मौसम है ना, तबीयत खराब होए के घलोक ज्यादा संभावना रही थे।
0: हाँ मोनिका, ये मौसम में हमन ला अपन शरीर को ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ।
0: काबर की कई बार देखे में आते कि हमारे शरीर में पानी के कमी ले कतको जन अपन जान घलो गवा देते
1: हैं, तो है
0: ना? और संगे संग जो है हमारे ये मौसम में देखथन कि हमारे शरीर के साथे साथ का होते कि चारों कोती पानी के घलो कमी हो जाते। ऐसा में हमला पानी के मोल समझ में आते और कथे घलो ना जल है त कल है।
1: और हमारे सियान मन यू कहते है कि पानी ले जिंदगानी और पानी ले हमार खेती किसानी। तो समित भाई सिर तो बात की हावस, जे जल है तो कल है, जिला ध्यान में रखत जल माने पानी के संरक्षण हमला करना चाहिए। पानी के संरक्षण माने पानी की हर बूंद के चतुराई के साथ उपयोग करना, माने ओकर देख रेख करना कि भाई ओला मन कैसे उपयोग करत हन, ओला बर्बाद होए ले बचावन। एक अनुमान के मुताबिक हमारे जिन विशेषज्ञ मन है ना, उन्होंने बताते कि भाई पृथ्वी में 1% हालांकि हमारे धरती में बहुत अगन पानी है, फिर 1% पानी ऐसे जिन पिए बर उपयुक्त होते हो, जेकर खातिर हमारे मन की जिम्मेवारी है वो बढ़ जाते कि भाई एकर ले हमला जल संरक्षित करना है, जेकर ले हमारे अवैया जिन पीढ़ी है वो ये जल के सही उपयोग कर सके।
0: हाँ मोनिका, एकदम सिरतोन बात कह वास्ते हैं, पर आज के बेरा में हमन देखथन कि लोग मन एकर पर जागरूक नहीं आवे। जबकि हम अल्लाह अगर चाहन ता अपन दिन के जो जीवन शैली है ना, उमे छोट छोट बदलाव करके जल संरक्षण में बड़े योगदान दे सकत है। जैसे कि हम अना देखथन कि जैसे ब्रश करत हन, शेविंग करत बेरा, या फिर बर्तन ला धोत बखत हमन देखथन कि नल्ला खुला छोड़ देथन, जेकर ले पानी बहा जाते। संगे संग अक्सर हमन

0: घर में देखथन कि कोनो पानी रिसत हवे पाइप में लीक हो गए हे ओमन ला हमन ला तुरंत मरम्मत करवाना चाही।
1: कतकोन बखत हमन ढील देते थन कि भाई आज नहीं करान ज्यादा काम है काली करवा ले वो समित भाई संगे संग हमन ला ना चाहिए जैसे कि अभी गर्मी के बेरा में घर घर कूलर उपयोग होते कतकोन झन मन हा वाटर फिल्टर उपयोग करते तो कूलर के पानी ला हफ्ता के हफ्ता जैसे साफ करत है तो वो पानी के उपयोग हमन आंगन धोए में कर सकथन है ना। और जैसे ये फिल्टर के पानी के बात है तो एला हमन अपन बारी बकरी में डाल सकथन पानी के उपयोग कर सकथन पोछा लगाए बर उपयोग कर सकथन गाड़ी ये वाला धोए बर उपयोग कर सकथन। अब जैसे पानी के बचत की बात करत है ना तो आपका गर्मी के बाद आई बरसात के मौसम तो एक ठेन मतलब कहन के एक वाटर हार्वेस्टिंग के नाम सुने हो बते हैं ये ना छत के जिन पानी होते ओला सीधा भुइया तक पहुँचाते जिखले भुइया के पानी के स्तर में सुधार हो सके। और अभी के बेरा में हमन देखथन कि लइका मन सावर लेना आए लगे हैं भाई ये तो एक फैशन हो गए लइका का है बड़े घलोक नहाते भाई हमन ला चाहिए कि बाल्टी के उपयोग करन और पानी की बचत हो सके ऐसन पानी की बर्बादी ला झन करन भाई ये बात के ध्यान रखन।
0: हाँ मोनिका देखो जिक शावर से नहाए में कहे कि पानी ज्यादा बर्बाद होते है ना। एकर अलावा देखथन खेती किसानी में या फिर बगीचा में पानी देवर हमला फवारा या फिर टपक सिंचाई के प्रयोग करना चाहिए जेकर ले पानी बच सके और बेरा बेरा में माटी के जांच करत रहना चाहिए और फसल के आवश्यकता के अनुसार ही हमला सिंचाई करना चाहिए। ज्यादा ले ज्यादा जैविक खेती अपनाना चाहिए जेकर ले माटी के जो जल धारण करे के जो क्षमता रहते वो बढ़ जाते। एकर अलावा हमला मौसम के अनुसार जो पानी के खपत ला नियंत्रण करने वाला जो सेंसर के उपयोग हमला करना चाहिए। संगे संग घर के वाश बेसिन और एसी कूलर जैसे तभी बता दे ना कि जैसे पानी ला साफ करा था हमन कूलर ले पानी निकाला था वो पानी ला हमन एटी तीना फेंक करके वाला हमन बगीचा में उपयोग कर सका था।
1: समित भाई संगे संग हमन घर मन में जो साग भाजी फल फलहारी होते ना हम आई लोगन में जैसे ओला धोथन तो वो जो पानी बच गए ओखरो उपयोग कर सकथन ओला हमन अपन बारी बकरी या गमला में जिन पेड़ पौधा लगाए हैं ओमा डाल सकथन। पर ये देखे में आते है कि हमन अपन फर्श ला गाड़ी ला धोए बर पाइप के उपयोग करथन जेखर ले पानी के ज्यादा खर्चा होते। अब ये बाचे बचाए खातिर हमन बाल्टी के उपयोग कर सकथन पोछे जैसे साफ कपड़ा है ओखर उपयोग कर लेन पोछा लगाए बर एखर उपयोग कर लेन। मैंने ये होते ना कि देख जल के संचयन आज के बेरा में बहुत जरूरी है ओखर संरक्षण बहुत जरूरी है तो ये खर स्तर बढ़ाए खातिर जो पानी फालतू बहाते ओखर ऐसे हमन व्यवस्था करें कि जेना सीधा भुइया में जाए जैसे पहले गांव में का सोखता बनावत नहीं है तो ओखर उपयोग ऐसे रहा है कि भाई जैसे अब घर में हमें मनन बारी बकरी में या कहूँ सोखता बने तो पानी ला ऐसे नाली छोटे से बना दें कि वहाँ तक पानी पहुँच जाए और वो सोखता में कहे कि एक टाइम के बाद वो पानी है उमा धरती माँ चल देती है इसे तो एक हल्ले पानी के बचाव हुआ है। अब कहे समय बदला थे तो एक नवा तकनीक आ गई है वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये कि हमला ना जैसे आजकल जगह जगह देखत हो गए कि भाई हर जगह सीमेंट कर दे है फर्श लगा दे है तो भैया में पानी कैसे जाए तो ये सब नवा नवा तकनीक ला अपना के हम ऐसे कर सकथन कि पानी ला बचा सकथन। काबर की अब बिच्चे मन के है ना पानी ले जिंदगानी पानी ले खेती किसानी और पानी है तो भाई जल है तो कल है वाले बात है। अब ऐसे है समित भाई गुड बात कर वो फिर सुनथन ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: राजा मोतिया बिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
1: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
0: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: बेरा है किसान वाणी के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मोनिका देख भाई, अभी हमन बात करत रहे पानी के बचत के,
1: हाँ
0: है ना। एकर अलावा हमर मन के जीवन में ऐसा सात प्रमुख जीनिस है जेला हम ना मिशन लाइफ कह सकते।
1: अच्छा,
0: काबर की ना एकर बिना हमर मन के जीवन नष्ट हो सकत है। जेमे सबले पहली नाम आते ऊर्जा के बचत, जेमे हम अल्लाह चाहिए कि बिजली बचाए बर ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ।
0: काबर की एपर एकर जो दुरुपयोग है वो आज घर घर में हुआ थे, जेकर बार हम अल्लाह चाहिए कि सामान्य बल्ब के जगह में एलईडी के प्रयोग करन, है ना। और कई बार हम देखथन कि जरूरत नहीं है तो भी मनखे मन लाइट ला जलावत है, पंखा ला चलात है, एकर कोती हमन ला ध्यान देना चाहिए। और जरूरत नहीं है तो हमन ला लाइट और पंखा के बचत करना चाहिए, हो सके तो प्राकृतिक रोशनी जो हमन ला मिलते है उकर प्रयोग ज्यादा ले ज्यादा करना चाहिए।
1: सिर्तुन बात है, हमेशा देखा माथे कि भैया मन एक कमरा में हन और दूसरे या कमरा के पंखा चालू है, लाइट बरत है, और दिन के दिन में घलो कतको झन लाइट जला देते, तो ये सब बात के ध्यान रखन। फिर एमा नाम आते प्लास्टिक के थैली के, जेकर जगह हमन कपड़ा या जूट के थैली के प्रयोग कर सकथन। और कतकोन बखत ऐसे होते ना कि एक बार उपयोग हो या प्लास्टिक के उपयोग करथन तो एक हल्ले का है ना हमर प्रकृति ला नुकसान होते, तो भाई हमन एक हर बजाय प्लास्टिक या बोतल स्ट्रा या कप ऐसे उपयोग करन जिले हमन दोबारा घलो अपना उपयोग कर सकन।
0: हाँ मोनिका, एमे एक नाम हूँ आते कि जो सतत खाद्य प्रणाली ला अपनाना चाहिए हमन ला, है ना, जेकर बर फल सब्जी के सेवन करना चाहिए और खाना पीना के जो चीज रहते ओला बर्बाद होए ले बचाना चाहिए। और जरूरत हो सके तो हमला शाकाहारी विकल्प ला अपना के अपन थाली में कहा है कि जो शाकाहारी रहते ओला ज्यादा ले ज्यादा शामिल करना चाहिए।
1: सिर्फ तुम बात है, तभी तो आजकल जम्मू मनखे जागरूक होके मिलेट्स ला अपनावा थे, जेकर ले हमारे शरीर ला पोषण तो मिलवे करते, कतकोन प्रकार की बीमारी ले घलोक बचाव होते। फिर होते कचरा, कचरा कम करना, मतलब ऐसा कि भाई घर मन फैल उपयोग कर सकन, ये नियमला अपना के घर के जिन गीला कचरे वाला उखर खाद बनावन, जैसे सब साग भाजी फल फलहारी मन के छिलका होते ना ओला मन इति तिथि फेंक देथन, तो भाई घर मन दो उपयोग कर सकथन, एक तो ये कि गाय गरुवा मन ला खवा देवन, या फिर घर जिन कचरा है वो बनाए की कोशिश करन, जैविक खाद बनावन।
0: हाँ मोनिका, सिरतोन बात क्या हुआ सब। और इमें एक नाम हुआ थे जिला मन ई कचरा कथन।
1: अच्छा।
0: काबर की देख आजकल हम देखतन कि घरों घरों में है ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग करा था, जेकर चलत का है कि जैसे कोई चीज खराब होते था हमन ओला फेंक देता।
1: हाँ।
0: जबकि हमारा ये चाहिए कि पहली ओला हमारा मरम्मत करवाना चाहिए, है ना। मरम्मत अगर नहीं हो पाए वो स्थिति में हमला का करना चाहिए कि ओला ऐसे जगह में हमला उपयोग करना चाहिए कि तो का रिसाइकिल हो सके, ओला दोबारा उपयोग करे के हमला कोशिश करना चाहिए।
1: सही बात है समित। फिर होते भाई स्वस्थ जीवन शैली अपनावन। देखो का होते ना आजकल नान्हे नान्हे लड़का मन ला घलोक थोड़की दूरी पर भेजबे तो मन सीधा उठाते अपन गाड़ी और चल देते, भाई एखर ले कतना नुकसान है, ओखर मन के स्वास्थ्य कतना दिक्कत होत हुई, सोचो मन कभी पैदल नहीं चले या व्यायाम नहीं करे तो कितना दिक्कत होते, आगे चल के यही सब के कारण रिकम रिकम की बीमारी घलो को जते। तो भाई कोनो भी मनखे हुए, लड़का हुए, सियान हुए, कोनो भी हुए, माई लोगिन मन हुए, एमन अपन स्वस्थ जीवन शैली अपनावे, पैदल चले, साइकिल के उपयोग करे, जे खले भाई अब दो फायदा है कि स्वास्थ्य घलोक बने हो रही और पेट्रोल डीजल की बचत घलोक हुई। फिर हमारे

0: शरीर के स्वास्थ्य बने रह सके ये खातिर योग है, व्यायाम है, ये ला अपनावन हमार रोजमर्रा के दिनचर्या में ये मल्ला शामिल करन। संगवारी हो, ये अभियान में जुड़ के पर्यावरण के अनुकूल आदत ला अपनावन, जेखर ले अपन संगे संग हमार देश के विकास में घलोक अपन भागीदारी ला निभावन। भाई ऐसे बात है संगवारी हो कि हमन स्वस्थ रहो तो पर्यावरण पर हम जिन उद्यम करा थन वही बने हुई, काबर की देखो पर्यावरण ले प्रकृति ले मिले जम्बो वरदान हमारे स्वास्थ्य खातिर होते, तभी तो हर मौसम में जिन फल फलहारी आते साग भाजी आते वो हमारे स्वास्थ्य ले जुड़े आते।
1: हाँ मोनिका सिरतोन बात क्या वास्ते हैं और देख गोट बात तो कर वो
0: हाँ।
1: रवि सुनथन एक सुगर गीत जेमे स्वर देहावे तीरथ राम गड़े वाला साथी में
0: हाँ।

0: संगवारी हो, आप मन के जो शंका रही थे ओला हमन अपन कार्यक्रम के माध्यम ले दूर करे के प्रयास करथन। क्रम होते आज की सलाह, एमे आज आप मन बर लेकर आए हन टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन नए विषय में जानकारी। जानकारी देवत है डॉक्टर नरेंद्र लागपाले, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और आप सन गोड बात करे हवे मोनिका जैन
1: है। सुनथन क्रम आज की सलाह, आप मन ला सुनवाथन। संगवारी हो, खेती किसानी में हमन नवा नवा तरीका अपना के खेती करे के प्रयास करथन। और जब हम साग भाजी की फसल लगाथन तो हमारे प्रयास ये रही थे कि ज़्यादा ले ज़्यादा गुणवत्ता वाले और ज़्यादा उत्पादन ले सकन। तो संगवारी हो, जैसे अभी हमन जैसे टमाटर के बात करन, तो टमाटर मैंने पताल जिन है वो सरी जिन साग भाजी है वो मत तो डरबे करते, फिर अभी पताल की चटनी घलो बड़ मीठा थे। तो भाई पताल में रोग प्रबंधन कौन प्रकार ले करे जा सकते, का रोग होते, ये सारी जानकारी खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र लागपाले जी। हाँ, आप मन हाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में।
2: नमस्कार बुनिया दीदी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज अमन बात कर रहे थे टमाटर में काका प्रमुख रोग लगते उखर प्रबंधन कौन प्रकार ले कर सकते हैं, तो सबले पहली तो आप मन ये बताते हो कि टमाटर के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं।
2: टमाटर के प्रमुख रोग जो लगते हैं तो होता है पौधशाला में उसका जो रोग लगता है जिसको हम डंपिंग ऑफ कहते हैं। दूसरा एक होता है उकटा नाम का रोग जो विल्ट जिसको कहते हैं। ये उकटा नामक जो रोग है वो दो प्रकार से लगता है, एक फफूंद के द्वारा और एक जीवाणु के द्वारा। इसके अलावा अगेती अंगमारी नाम का एक रोग आता है और फिर पछेती अंगमारी भी आता है, लेकिन साधारण तौर पर ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक रोग होता है जड़ ग्रंथि रोग, जो जड़ों में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। और एक होता है पर्ण कुंचन या लीफ कर्ल रोग, जो विषाणु के द्वारा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपन बड़े सुघर सुघर बात बतावा था, तो सबसे पहली आपन ये बताया कि काका रोग लगते, अब रोग के पहचान कौन ढंग ले कर सकते हैं, हमारे किसान संगवारी मन ये विषय में थोड़ा विस्तार ले बताते हो।
2: तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि डंपिंग ऑफ फार्म का रोग लगता है या जीवाणु उकटा रोग लगता है, तो उकटा रोग जब लगता है खेत में खड़ी फसल में, तो जो फफूंद के द्वारा जब वो उकटा रोग आता है तो उसमें पौधे की जो पत्तियां हैं नीचे की पत्तियां वो पहले पीली पड़ने लगती हैं तथा धीरे धीरे वो पीलापन ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर धीरे पौधा पूरी पत्तियों के पीले होने के बाद पत्तियां भूरी हो जाती है और पौधा पूरा सूख जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। वहीं अगर ये जीवाणु के द्वारा अगर होता है तो ये हमको बहुत जल्दी 2-3 दिन में पौधा पूरा हरा का हरा सूख जाता है बिना पत्तियों के पीला पड़े।
1: जी,
2: तो ये दोनों में फर्क होता है। तो इस हिसाब से जो जीवाणु जनित उकटा रोग होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत की फफूंद द्वारा पैदा हुआ उकटा रोग।
1: डॉक्टर साहब, ये तो पहचान कर डरें, फिर का तरीका ले ये रोग के प्रबंधन कर सकते हैं। मैंने कतकुन बखत ऐसे होते ना कि हम शुरू में कोनो दवाई डाल देते हैं तो वो रोग नहीं हो है, या फिर रोग होए के बाद ओला हमन कौन प्रकार ले हमार फसल ला निजात दिला सकते हैं, कैसे हमन इखर प्रबंधन कर सकते हैं, ये विषय में आप थोड़कुन विस्तार ले बताते हो।
2: हाँ, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुनिया जी। तो जो पहचानने के बाद हमको क्या करना है कि मान लीजिए उसी खेत में हम लगातार टमाटर ले रहे हैं, तो अगर पिछले सालों में भी ये बीमारी आई है तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको हम गर्मी में जुताई करके मिट्टी पलटने वाले हल से और 1 महीने के लिए उसको खुला छोड़ दें, जिससे ज़्यादा तापक्रम में वो जो रोगजनक है चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फफूंद हो वो मर जाते हैं। दूसरा, जब हम बीज की बुआई करेंगे या थरहा लगाएंगे, जब वो थरहे की जड़ को उपचार करके लगाना चाहिए। वो उपचार हमको करना है कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशी से तरह का उपचार करके हमको लगाना है, जिससे क्या होगा कि जब हम लगा देंगे वो जो रोगजनक पहले से भूमि में उपस्थित है तो वो 10 से 15 दिन तक उसकी रक्षा करेगा और रोग का संक्रमण नहीं होगा।
1: जी,
2: इसके बाद भी अगर हमको दिखाई देता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो पानी हम देते हैं सिंचाई के रूप में उसको हम बहाव पद्धति से ना दें, उसको हम या तो ड्रिप इरीगेशन से दें या फिर नाली बना के केवल पौधे पौधों के पास में देते चलें। पूरा बहाव पद्धति से देंगे तो वो रोगजनक पानी के साथ दूसरे स्वस्थ पौधे तक भी पहुंच जाएगा और वहां पर भी वो नया संक्रमण करके नए पौधों को भी बीमारी से ग्रसित कर देगा।
1: जी,
2: इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे। और जब जीवाणु जनित उकटा रोग आ जाता है तो हम 15 किलो

0: प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर मिला के और उसका भूमि का उपचार करते हैं, जिससे जड़ों के पास जो जीवाणु होता है उसको काफ़ी कम करने में मदद मिलती है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे अपन बताते रहे हो कि दवाई की छिड़काव हमन कर सकथन, तो एकर छिड़काव बखत का का सावधानी रखना चाहिए हमारे किसान संगवारी मल्ला?
0: किसान भाई को जब पौधे के ऊपर जब छिड़काव करेंगे तो उस समय जो पानी हम लेते हैं वो पानी हमको साफ पानी लेना है, गड्ढे का पानी और मटमैला पानी नहीं लेना है। उसके बाद वो जो दवा हमको मिलाना है छिड़काव करने के लिए, उस दवा का पहले हम छिड़काव वाली टंकी है उसमें सीधा ना डाल के दवा का थोड़े पानी में बाहर घोल बना लें, और उस बाहर घोल में से फिर जितनी मात्रा चाहिए उतना हम छिड़काव वाली टंकी में डालें और उसमें पानी मिला दें।
1: जी
0: नहीं तो कई बार क्या होता है, सीधे दवा मिलाने से वो दवा नीचे तली में बैठ जाती है और वो ठीक से पौधे तक नहीं पहुंच पाती। और कोशिश ये करें कि शाम को 3 बजे के बाद अगर हम छिड़काव करते हैं तो दवा का अवशोषण पौधे में बहुत अच्छे तरीके से होता है, और हवा के दिशा में छिड़काव करना चाहिए। उस समय जो छिड़कने वाला है उसको अपने नाक मुंह में थोड़ा सुरक्षा के उपाय करना चाहिए, नाक मुंह में कपड़ा बांध के उसके बाद ही छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद अब हाथ और मुंह को अच्छे से साबुन से धो के और रखना चाहिए, और जो कपड़ा उसने पहना है उसे भी धो ले तो ज़्यादा अच्छा होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आप मन एक पहली बताते रहे हो कि बीज जिन होते ओखरो कारण वहाँ रोग की समस्या आ सकते, तो जैसे बीज चार करे खातिर हमला का करना चाहिए?
0: हाँ, बीज उपचार करने के लिए सबसे अच्छा तो ये होता है कि जितने बीज को हमको बुआई करना है या थरहा डालना है उसके हिसाब से हमको उतनी दवा और किस बीमारी के लिए हम उसका उपचार करना चाहते हैं इसका ध्यान रखते हैं। साधारण तौर पर जो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जो कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है या कार्बेंडाजिम प्लस मेटालेक्सिल नाम की जो दवा आती है, इससे बीज का हम उपचार करें।
1: जी
0: इसमें क्या होता है कि इसमें जो अलग अलग प्रकार के फफूंद रोगजनक हैं उनका उपचार आसानी से हो जाता है।
1: जी
0: उपचार करने के लिए साधारण तौर पर 2 ग्राम दवा हम प्रति किलो बीज के हिसाब से अनुशंसित करते हैं, और अगर बीज मान लीजिए चिकना है, उसकी सतह चिकनी है तो उस पर वो चिपकेगा नहीं, उस समय हम ये करते हैं कि उसको पहले हल्का से गुड़ के घोल से घोल का छिड़काव करते हैं जिससे सतह पर चिपचिपापन आ जाए, और उसके बाद फिर हम वो रसायन का उपयोग उसके ऊपर करते हैं जिससे रसायन की एक पतली परत उसके ऊपर चढ़ जाए, और थोड़ी देर उसको हवा छायादार स्थान में सुखा के और उसके बाद ही बीजों की बुआई करना चाहिए जिससे वो पतली परत अच्छे से बीजों के ऊपर बीज की सतह पर बैठ जाए।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आवा थे मन में कि भाई जैसे कतकुन वक्त ऐसे होते हैं कि हमन टमाटर लगाए नुमा समस्या आगे रोग बीमारी के ओखर निदान कर डरे, हमारे समस्या के हल हो गए, तो क्या एकर जिन बीजा होते ओला हमन भंडारित करके रख सकथन या फिर ओला हमन अवैया फसल पर उपयोग कर सकथन का?
0: हाँ, जो स्वस्थ पौधों से हमको जो टमाटर मिलेगा उसका बीज हम अगले वर्ष की फसल के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए उसमें विषाणु जनित रोग आया है तो उसमें तो एक तो फल नहीं बनता है, फल बनेगा तो बीज बहुत कम बनेंगे और वो बीज में उत्पादन क्षमता या अंकुरण क्षमता नहीं होती है। तो जब भी हम अपना बीज अगले साल के लिए बीज के लिए हम एकत्रित करना चाहते हैं तो जो एकदम स्वस्थ पौधा है उसका जो फल अच्छा है और जो चमकदार फल हो वैसे ही फलों से हमको बीज प्राप्त करना चाहिए, और उसका उपयोग अगले वर्ष हम बीज के रूप में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब जाति बिराती हमारे ऐसा किसान संगवारी मल्ला आप मनों का विशेष बात बताना चाहूँ जिनमें टमाटर की खेती करते हैं या करना चाहते हैं?
0: हाँ, किसान भाई को ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली फसल है तो हर एक दिन बाद 2 दिन बाद पूरे खेत का एक चक्कर जरूर लगाएं और उसमें ये देखते रहें, अवलोकन करते रहें कि कोई पौधा कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं दिख रहा है, और दिखता है अगर एक दो पौधे उखाड़ के कोई उसका नुकसान नहीं हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है कि वो बीमारी से ग्रसित पौधे को पहले वो उखाड़ दे, दूर ले आकर गड्ढे में दबा दे, और उसके बाद कोई उसको छिड़काव करना हो उसके बाद ही वो उसका छिड़काव करे। नहीं
1: जी
0: तो क्या होगा, वो बीमारी से ग्रसित पौधा भी रहेगा तो उससे भी वो रोग फैलता ही रहेगा भले ही हम कितना छिड़काव करें। और छिड़काव जब हम दवा का करते हैं तो 10 से 12 दिन के बाद एक बार और छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो नई पत्तियां नई शाखाएं निकलती हैं उसको भी संक्रमण से बचाना है, तो वो दूसरा छिड़काव वो नई पत्तियों शाखाओं को संक्रमण से बचाता है। तो किसी भी दवा का कम से कम 2 बार छिड़काव करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपन बड़ सुघर तरीका ले बताए कि टमाटर में का रोग हो सकता

0: सकथे, ओखर का पहचान हमर किसान संगवारी मन कर सकथे, और दवाई बर आपन बताए कि भाई कौन प्रकार ले कौन बेरा में दवाई के उपयोग करना सही तरीका के उपयोग करना जरूरी होते, और सबले सुघर चीज आप मन हमारे संगवारी मन ला इतना विस्तार ले सारी जानकारी दो, ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

संगवारी हो अभी सुनेन क्रम आज की सलाह। आज हमें आप मन भर लेके आए रहें टमाटर के प्रमुख रोग एवं प्रबंधन, ये विषय में जानकारी। जानकारी देवत रीन डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। अब आप सब गोट बात करे रीने मोनिका जैन है।

0: हम है भारत के किसान, हम
1: किसान, हम
2: किसान।
1: समित भाई, हमर करा क्रम हलो चौपाल ले जुड़े एक सूचना है, तेनला संगवारी मन ला बता देथन। संगवारी हो, अवैया शुक्रवार माने काली के दिन 29 मई 2026 के प्रसारित होइया हलो चौपाल कार्यक्रम में इधर के विषय होही भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रख रखाव। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारा फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483, और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के बेरा होगी शुक्रवार 29 मई 2026 के बिहेनिया 11:30 ले 12 बजे तक, और ये कार्यक्रम के प्रसारण होगी शुक्रवार मैंने कॉलेज के दिन संझा बेरा 7:30 में। भाई, आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही और सूचना नीचे सिरावा थे। और संगवारी हो, अब आप मतलब बता देते हैं हमारा आज के प्रश्न।
3: तो अभी क्रम चलता ना, अभी क्रम है कृषक प्रश्न मन। तो अमर आज के प्रश्न है, टमाटर में फफूंद और जीवाणु के कारण कौन से रोग होते हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लो, टमाटर में फफूंद और जीवाणु के कारण कौन से रोग होते हैं?
1: और सही जवाब पर मेल आईडी में बता देता हूँ। मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। इसने मन पाछू हफ्ता पूछे रहे कि कच्चा दूध के डेयरी खोले पर का उपकरण की जरूरत पड़ते, और सही जवाब है पाश्चराइजर, होमोजोनाइजर, चिलिंग सेंटर और पैकेजिंग क्षेत्र। और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम बताई समित भाई।
3: सही जवाब देवैया हमार संगवारी मन के नाम है देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवा रजक, हव्य रजक, तन्नू रजक, ग्राम नागर कोहरा ले जग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, ग्राम बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र, मनहरण वर्मा, बंटी और मुरली वर्मा। गर्रा पार बांदा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू, संबलपुर जिला कांकेर ले फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, मदनपुर कवर्धर ले श्रवण कुमार साहू, योगेश्वर साहू, राहुल साहू, नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा वर्मा, शारदा वर्मा, डोगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का। सही जवाब देवैया जम्मू संगवारी मल्ला।

0: गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: भाई बधाई के संगे संग एक ठन गीत और सुनथन और संगवारी मन ला घलक सुनवाथन, जेला गाय है राकेश तिवारी और संगवारी मन।

0: अभी सुनेंगे सुग्घर गीत जे में स्वर रीसे राकेश तिवारी और संगवारी मन के। ये रीसे आज की किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और जाएगी पहली बता देवन काले के कार्यक्रम काली चौपाल में गोडबात संग सुनो क्रम हलो चौपाल, जेकर विषय हो ही भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रख रखाव जानकारी दी ही फोन के माध्यम ले आप मल्ला श्री सौरभ कश्यप नायब तहसीलदार रायपुर और गीत संगीत के मधुरता तबगरबे करी तदेव विदा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मोनिका
0: और समित के राम राम, राम।

अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं चित्रपट संगीत। वीर जारा, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 9:15 पर भी सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत। आज इसमें पंथी गीत के कलाकार हैं करमचंद कोसरिया और साथी।

श्रोताओं, पंथी गीत को देते हैं थोड़ा सा विराम और सुनते हैं एक सूचना। आगामी शुक्रवार 29 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 4003484, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार यानी कि कल 29 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी और इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें पंथी गीत के कलाकार हैं करमचंद कोसरिया और साथी।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें पंथी गीत के कलाकार हैं करमचंद कोसरिया और साथी।

लोक संगीत में आज पंथी गीत के कलाकार थे करमचंद कोसरिया और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में सचिन खलप्पा शिरोल और रुद्र किरण निम्हान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन जीत दर्ज की। शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सात्विक चिराग और ध्रुव तनिषा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 श्रृंखला आज से शुरू। पहला मुकाबला आज रात 11 बजे से कैम्सफोर्ड में।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां भारतीय अंडर 17 कुश्ती के खिलाड़ियों ने आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबैद को 11-4 से हराया। वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने कोरिया के शियोक मोसिम को 8-0 से मात दी। हाल ही में अंडर 23 कैटेगरी में भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी और भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में अंडर 23 में 27 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया था। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए अंडर 17 कैटेगरी में आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुश्ती प्रशंसकों को इस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद होगी। इसे चलते हैं सीधे चेस के मैदान की ओर, जहां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के राउंड 3 में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में भारतीय स्टार खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल चेस में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे एक लंबे गेम में कार्लसन को पीछे छोड़ दिया और ज्यादातर समय तक कंट्रोल में दिखे। हालांकि समय की भारी कमी के कारण मैच का रुख बदल गया और कार्लसन ने इसका फायदा उठाते हुए बढ़त हासिल कर ली। कुछ देर बाद नॉर्वे के स्टार ने दबाव में आकर एक बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और टूर्नामेंट लीडर अलीरेजा फिरोजा ने कड़े क्लासिकल मुकाबले में ड्रॉ खेला। फिरोजा ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की। विंसेंट किमर और वेस्ली सो के बीच बचा हुआ क्लासिकल गेम भी एक संतुलित संघर्ष के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। वेस्ली सो ने अतिरिक्त पॉइंट्स इकट्ठा करके आर्मागेडन गेम को अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड के बाद फिरोजा एक और शानदार प्रदर्शन के बाद तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। नॉर्वे चेस विमेंस में एक बार फिर करीबी मुकाबले देखने को मिले। 3 क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए और फिर मैच के नतीजे का फैसला आर्मागेडन से हुआ। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजून और झू जिनर का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। झू जिनर ने एक समय अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वह इसे जीत में नहीं बदल पाई। झू ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। एना मुजीचूक और कोनेरू हम्पी ने भी एक संतुलित संघर्ष के बाद अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म किया। मुजीचूक ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। क्लासिकल चेस में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही और अंत में खेल ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर खेला गया, जहां दिव्या ने आर्मागेडन गेम जीत कर अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे राउंड के बाद दिव्या और झू जिनर ने आर्मागेडन में अहम जीत हासिल करके अंतर को थोड़ा कम किया। इसके बावजूद असुबाएवा नॉर्वे चेस विमेंस में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम्प।

0: शतरंज की बाजियों से रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रिस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते भारतीय खिलाड़ियों पर आज की रिपोर्ट।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि एचएस प्रणॉय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधु ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9 21-12 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा। लक्ष्य ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि दूसरे वरीय कुनलावुत ने महज 2 अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा। पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 1 घंटे तक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के ली झी हुई और यांग पो सुआन को 21-15 11-21 21-18 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोन ताई से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रिस्टो भी अंतिम 8 में पहुंच गए, जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21 21-17 21-16 से मात दी। अब उनका सामना कोरिया के किम जाए हियोन जांग और हाजियोंग तथा मलेशिया के चीन तांग जिए और तोई वेई के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। प्रणॉय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लो किन यू से 18-21 21-16 15-21 से हार गए। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: अब रुख करते हैं पैरा एथलेटिक्स की ओर। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने कल पुरुषों की जैवलिन F64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।
2: सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे उन्होंने 2022 के हांगचो एशियाई पैरा गेम्स में बनाया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना खिताब बरकरार रखा। हरियाणा की ओर से सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने रजत और राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.84 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर T47 कैटेगरी में महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में हरियाणा के रिंकू ने अजीत सिंह और रवि कुमार को पछाड़ा। फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर का थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में 34.04 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में गुजरात की निमिषा चक्कुंगल ने लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना बेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कई रिकॉर्ड बने और इस प्रतियोगिता में भी एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रुख कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने जुआन मैनुअल सेरुंडोले को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने थॉमस मचाक को हराया। महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमो

0: वह अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वहीं कल तीन बार के चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। रुक कर लेते हैं क्रिकेट की ओर। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से मात देकर क्वालिफायर टू में जगह पक्की कर ली।
1: कल महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की। वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
2: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी। नाउ ओवर थर्ड, पुश द रोप्स बैक, स्लैम्ड अगेन, ही इज जॉइंड विद वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर गेम एट द मोमेंट।
1: वैभव 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं।
2: व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, वंडर किड।
1: इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इसके अलावा ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद को दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेट के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलील अरोड़ा ने नीतीश रेड्डी के साथ 6 विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलील ने 35 रन की पारी खेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यशराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। वैभव को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि मैं जब तक क्रीज पर रहूंगा इंटेंट दिखता रहेगा।
3: सभी कोचेज ने बोला था कि जो प्रैक्टिस में करते आ रहा है वही इस गेम में करना है, एंजॉय करना है और प्रेशर नहीं लेना इस गेम का।
1: सचिन तेंदुलकर की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट से सराहना मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
3: ये काफी अच्छा लगता है सर, मोटिवेशन मिलता है आपको और सब जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है तो हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि उनके ऐसे लेजेंड ने ट्वीट किया है, तो ऑफ कोर्स खुद में प्राउड की बात है।
1: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मजबूत बल्लेबाजी क्रम किस प्रकार गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो वैभव का सूर्योदय हो चुका है और उनके प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत जगमगाया हुआ है। और अब रुख कर लेते हैं महिला क्रिकेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे कैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 मई को, वहीं तीसरा मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाली महिला T20 विश्व कप में अंपायरिंग के लिए ICC ने 18 सदस्यीय महिला अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मैच रेफरी GS लक्ष्मी सहित 4 भारतीय अंपायर शामिल हैं। बात फुटबॉल की। भारतीय अंडर-20 फुटबॉल पुरुष टीम को AFC अंडर-20 एशियाई कप चीन 2027 क्वालिफायर्स के लिए ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। ये क्वालिफायर्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में होंगे। और श्रोताओं, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि

0: महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुनिधि चौहान के स्वर में लीजिए अब सुनिए दिल परदेसी हो गया फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम के अंतिम में लीजिए अब सुनिए रॉक स्टार फिल्म का गीत जावेद अली मोहित चौहान और एआर रहमान के स्वरों में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगी से संवारा है एआर रहमान ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। एक फौजी का घर, लीजिए सुनिए।

0: रज्जी मियां, ये देख क्या लिखा है इस घर के दरवाजे पे।
1: अल्टू उस्ताद, शेर लिखा है कोई? मौत को एक बार जब आना है, हाँ, मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम इसे खेल ही समझा किए, मरना क्या है। वतन हमेशा रहे शाद, काम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे रहे ना रहे। हम रहे रहे ना रहे, हाँ। देश के लिए मर मिटने की चाहत रखने वालों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जय हिंद। ये क्या है पलटू उस्ताद? अबे ऐसे भी कोई लिखता दरवाजे पर? कोई शायर वायर तो नहीं है?
0: नहीं रज्जी मियां, ये शायर कवि का नहीं, एक फौजी का घर है।
1: अच्छा,
0: पर हमें इससे क्या, हम ठहरे चोर ठग, हमारे लिए क्या फौजी, क्या बिजली विभाग का इंजीनियर। चल आज इस फौजी के घर में ट्राई करते हैं।
1: बड़ा मकान है, क्या पता हाथ भी बड़ा माल लगे पलटू उस्ताद।
0: हाँ रजमिया, सब प्लान के हिसाब से, समझ गए? यहाँ प्लान नंबर 12 चलेगा, पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर देना कोई।
1: अरे वो तो कुत्ता आ गया था, वरना किसकी मजाल। चलो
0: चलो।
2: घर पर कोई है? अंदर कोई है?
1: कोई है भाई।
0: आ क्या साहब घर पे हैं? अरे घर के मालिक साहब। सर घर पर है।
3: चादर? तुमने कैसे कपड़े की दुकान समझ लिया है? चादर लेनी है तो बाजार जाओ।
1: इसके कान की बैटरी तो डाउन हो रखी है पलटू उस्ताद।
0: बैटरी डाउन नहीं है, तार ढीली है, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कब सुनाई देता है कब नहीं। चादर नहीं, तुम्हारे साहब मालिक ओनर सर घर पर है।
3: सुन लिया, चिल्ला क्यों रहे हो? कह तो दिया कि चादर यहाँ नहीं मिलती।
1: गजब तेरा कमबख्त।
3: अरे
1: मालिक है घर में, मालिक।
3: अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, बहरे हो क्या
1: है?
3: मालिक घर पे नहीं है, मीटिंग में गए हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे 26 निहत्थे टूरिस्टों की जान ले ली, सुना नहीं क्या? उसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है ना।
0: अच्छा तो घर में मालकिन है? मालकिन
3: वो तो स्वर्ग में है, वो फोटो दिखाई नहीं देती दीवार पे टंगी हुई।
1: अरे तो उनका कोई बेटा बेटा कोई तो होगा।
3: कौन? छोटे बाबू मेजर राहुल, वो भी स्वर्ग में है। उधर वाली दीवार पर उनकी फोटो है ना, वो देखो।
0: मतलब सभी स्वर्ग में?
3: सभी क्यों स्वर्ग में होंगे, बहू रानी यही है, बाहर नेम प्लेट लगा तो है।
0: ओ अच्छा।
3: ऊपर साहब का लेफ्टिनेंट जनरल महानंद चौहान रिटायर्ड एवीएसएम एसएम वीएसएम, उसके नीचे मेजर राहुल चौहान शौर्य चक्र, उसके नीचे कर्नल डॉक्टर नंदा, हमारी बहू रानी का। कहा तो था कि मीटिंग में गए हैं सब लोग। बड़े साहब की माता जी भी हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता।
1: तो क्या इतने बड़े मकान में इस वक्त कोई नहीं है?
0: रज्जी
3: लगता है तुम लोगों को दिखाई भी कम देता है। अरे मैं जो सामने खड़ा हूं, माता जी भी अंदर हैं। सुबह भी चार आए थे, राहुल बाबा के कॉलेज से हो तुम दोनों को भी साहब से ही काम होगा ना, सच बोला के झूठ?
0: एकदम सच बोला। काम है तभी तो आए हैं। हम लोग उनके आने तक उनका इंतजार करें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा?

0: ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
1: ठीक है
0: साहब, आते ही होंगे।
2: तुम एक काम करो, जरा दौड़ के देख के आओगे
1: जी। भाई थोड़ा पानी पिला दोगे? पानी पानी पीने का पानी।
0: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठो बैठो। बड़ी दूर से आए लगते हो, सच बोला कि झूठ?
2: बिल्कुल सही पकड़े हो, हम लोग जो है बाहर।
1: रज्जी रज्जी, वो क्या है ना, सारा दिन पैदल चलते हुए आ रहे हैं इतनी दूर से, बेरोजगार हैं, पैसे वैसे हैं नहीं जेब में, धूप इतनी ज्यादा है, बस पूछो मत।
0: अरे अरे, तो खाया पिया भी नहीं होगा? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मालिक कहते हैं घर आने वाले से बातचीत बाद में, पहले पानी और खाना। एक बात पूछूं, तुमको चिल्ला चिल्ला कर बोलने की आदत बचपन से है क्या?
1: नहीं नहीं, मुझे कोई आदत नहीं है। अरे वो तो तुम
2: अरे तुम कुछ खाने के लिए कुछ लाने की बात कर रहे थे। वैसे क्या नाम है तुम्हारा?
0: दाम। हद करते हो, खाने का दाम लूंगा भला।
1: अरे दाम नहीं, नाम पूछ रहे हैं तुम्हारा। नाम नाम नेम।
0: फिर चिल्ला क्यों रहे हो?
1: नाम नाम पूछ रहे हैं, नाम।
0: नाम पालदार, मेरा नाम पालदार है।
1: ये कैसा नाम है बे?
2: वाह वाह, बढ़िया नाम है भाई, बहुत बढ़िया। उस्ताद, नौकर का नाम जब पालदार है तो मालिक मालदार तो होगा ही।
0: कुछ कहा?
1: अरे नहीं कुछ नहीं।
3: इसके तो तार सचमुच हिले हुए हैं।
1: पानी पानी
0: पानी पानी। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने का सामान भी लेकर आता हूँ, तब तक तुम टीवी देखो।
2: जी
1: ठीक है, शुक्रिया।
0: आलू के पराठे बना देता हूँ, साथ में टमाटर वाली मीठी चटनी। तब तक तुम लोग हाथ मुंह धो लो, बहुरानी घर पे होती तो पकवान खिलाती, उनके जैसा खाना तो पूरी दिल्ली में कोई नहीं बनाता होगा।
2: पहले से ही शुक्रिया अदा कर दें या खाने के बाद?
0: मुर्गियाँ मुर्गियाँ तो साहब कहते हैं संगीत में होती है, पराठे में थोड़ी।
3: रहने दे रज्जी रहने दे।
2: अरे पलटू उस्ताद, जरा नजर तो दौड़ाना, चीजें तो अच्छी अच्छी हाथ आएंगी आज।
3: देख मेरे रज्जी, जरा कंट्रोल में रहे, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो खैरियत नहीं है। पता ना, पता है जरा सी चूक से कल बिट्टू पॉकेट मारते हुए कैसा धरा गया था। हाथ पैर टूटे सो अलग, और हवालात में सड़ रहा है ऊपर से। मत भूल हफ्ते पर पहले निकले हैं डासना जेल से।
2: समझ गया पलटू उस्ताद, समझ गया। ये देख पलटू, ये देख उस्ताद।
3: क्या है
2: उस्ताद? ये देख क्या है?
3: अरे क्या है? वाह, घड़ी महंगी होगी।
2: हाँ
3: खासे पैसे मिलेंगे। ये देख रज्जी,
2: हाँ
3: ये फाउंटेन पेन भी कीमती लगता है।
2: अरे वाह,
3: बड़े घर की चीज है, माल असली तो होगा। 2-4 हजार का तो बिकी जाएगा।
2: जरूर उस्ताद जरूर, लेकिन ये तो छोटी मोटी चीजें हैं सिर्फ, इनके लिए थोड़े ही जोखिम लिया है आने का। और कुछ भी तो देखो, रुपया पैसा गहनों का डिब्बा।
3: हाँ
2: अरे
3: आजा आजा आजा,
2: ये देखो देखो अलमारी भी खुली है।
3: रुक रुक अंदर से देखने दे।
2: अरे हैं? अंदर तो कुछ नहीं,
3: कुछ भी नहीं।
2: ये देखो उस्ताद, बॉक्स भी बिना ताले का है।
3: अच्छा खोल के देखने दे। अरे
2: उस्ताद
3: भी कुछ नहीं है,
2: मोटा माल तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा।
3: एक काम कर, इन चीजों को जहां थी वहीं रख दे।
2: हैं? क्यों उस्ताद?
3: अरे पहले रख फिर बताता हूँ।
2: अरे कोई ट्रिक चलने वाले हो क्या उस्ताद? लो रख दिया, अब पहले बताओगे या ट्रिक चलोगे?
3: सुन, घर के सब लोग मीटिंग में गए हैं, तुरंत तो आने से रहे। और मीटिंग में वही सब चल रहा होगा, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, पाकिस्तान का बैंड बजा देना चाहिए।
2: बात तो सही है उस्ताद, पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों की तबीयत से कुटाई तो बनती है। मुंबई दिल्ली पुलवामा उड़ी और उन तमाम आतंकवादी हमलों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा उनको। ये कुत्ते की दुम सीधी तो होनी चाहिए।
3: कंट्रोल।

0: जी, भावनाओं पर कंट्रोल करो। हम चोर हैं। हाँ तो सुन, हम लोग अभी मालिक के आने का इंतजार करेंगे।
1: ठीक है,
0: याद है ना प्लान नंबर
1: 12।
0: याद रख, जब हम उससे मिलेंगे तो ये बताएंगे कि हम गाजियाबाद के मानपुर गांव से चलकर आए हैं और जम्मू जा रहे हैं फौज में नाम लिखवाने। ऐसा नाटक करना है कि लगे कि हम तो अब देश के लिए जान देने को तड़प रहे हैं।
1: फंस तो नहीं जाएंगे उस्ताद, खतरा है इसमें। अभी तो 3 महीने सरकारी दामाद बनकर अपनी तसल्ली बख्श खातिरदारी करवा कर लौटे हैं। मेरे तो बैठने में ही तल्ले में दर्द होने लगता है। पकड़े गए तो चलने से भी तरस जाएंगे।
0: अबे मोटा माल चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नो गेन विदाउट पेन।
1: फुल बॉडी पेन ही ना हो जाए उस्ताद।
0: पूरी बात सुन। हम कहेंगे कि हम तो देहात के गवार लोग हैं, ना ये पता कि जम्मू में कहां नाम लिखा जाता है, ना ये कि जम्मू है कहां। बस गांव से चल पड़े हैं देशभक्ति की ज्वाला दिल में लेकर। अब तो अग्निवीर बनकर दुश्मन पर शेर की तरह टूट पड़ने को व्याकुल हैं हम।
1: गांठ में पैसा नहीं है, यहाँ आते आते रात हो गई। सामने आपकी एक कोठी दिखाई दी, लिखा हुआ पढ़ा दरवाजे पर, और अंदर आ गए, यहाँ पहुंचे। फिर उस्ताद?
0: फिर क्या, कहेंगे बाबूजी आप ही हमें बता दीजिए कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। जम्मू के टिकट के पैसे मिल जाएं तो और मजा रहेगा। ये सारा कीमती सामान तो लेकर जाएंगे ही, रुपए कहाँ रखे हैं ये भी पता लग जाएगा।
1: मजा आ गया उस्ताद, ट्रिक कमाल की है। तभी तो तुम्हें सब उस्ताद मानते हैं।
2: देखा,
1: लड़ाई पर जाने की बात सुनकर तो खातिरदारी भी कम नहीं होगी। मजा आ गया उस्ताद, मजा आ गया तेरी ट्रिक से।
2: देखा,
1: वाह, आज तो चोरी के साथ साथ पेट भर के माल भी उड़ाने का मौका मिलेगा उस्ताद।
0: रच्ची रच्ची, अपने अरमान काबू में रख।
3: ओके, चल चल रे नौजवान।
0: अरे वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके।
4: लो बैठकर नाश्ता कर लो। बाप रे, सारा दिन बिन खाए पिए कैसे चलते रहे। भाई हिम्मत और हौसले की दाद देनी पड़ेगी तुम दोनों की।
0: क्या खुशबू है।
1: उस्ताद, ये तो पराठे के साथ राजभोग भी ले आया।
0: हाँ, मीठे का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था।
1: मगर उस्ताद, भोग के चक्कर में कड़ी फाउंटेन पेन मत भूल जाना।
0: अबे चुप कर, सुन लेगा वो।
1: अरे ये पालदार निपट बहरा है।
4: बाजरा? अजी बाजरा क्या, अब की बार कुछ भी नहीं हुआ खेतों में, सब चौपट हो गया। पर तुम लोगों ने कैसे जाना?
2: लो भला ये भी नहीं जानेंगे। अरे जहाँ तुम्हारा मकान है वहीं हमारा मकान है।
4: अब लगान का रिवाज कहाँ, अरे सब सत्यानाश हो गया।
2: सत्यानाश तो हमारा हो गया, तुम ही बचे थे हमारा सिर खाने। खाना खाना
4: खा ले।
1: हाँ उस्ताद, लो लो लो। राजभोग के अंदर तो बादाम भी है।
0: गाड़ी की आवाज,
1: हाँ
0: लगता वो लोग आ गए।
5: देखो बेटा नंदा, आज मीटिंग में जो कुछ भी हुआ ना,
6: पापा आपका कमेंट ना बिल्कुल करेक्ट था उसमें।
1: सर,
2: गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
5: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग?
2: सर मेरा नाम पल्टन है। नमस्ते
5: जी। नमस्ते पल्टन। गुड, बढ़िया नाम है, बढ़िया।
2: शुक्रिया
1: सर। मैं रणविजय।
5: भाई खड़े क्यों हो बरखुरदार? सिट डाउन। मालदार
4: जनाब,
5: भाई इनकी प्लेटों में कुछ और भी डालो।
4: हाँ हाँ, भर देता हूँ जी, भर देता
2: हूँ। नहीं नहीं सर, सर नहीं, कष्ट मत कीजिए। पालदार ने हमारी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रखी है। हम लोग सर आपको एक तकलीफ देने आए।
5: What can I do for you, young man?
1: सर वो सुना है कि पाकिस्तानी फिर से देश पर चढ़ाई करने वाले हैं और फौज इकट्ठी कर रहे हैं।
5: हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, बिल्कुल ठीक सुना। हमारी बहादुर फौज ने पहले तो दहशत गर्दों के अड्डे उड़ाए और अब उनके 9 एयरफील्ड तबाह कर दिए।
0: अरे

0: सर।
1: करने दो फौज इकट्ठी उन्हें। हमारे जवान भी कौन सा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं बॉर्डर्स पर, हा? आने दो उनको, आने दो।
0: सर इस संकट काल में तो देश का हर जवान जाग उठा है सर।
1: यस, जागना ही चाहिए, जागना ही चाहिए। देश जब संकट से जूझ रहा हो तो जागना ही चाहिए। अब जरा अपने बारे में तो बताओ भाई, और मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ये भी बताओ।
0: सर हम दोनों दोस्त मानपुर गाजियाबाद से हैं।
2: जी।
0: देश पर संकट है ये सुनकर हमारा खून खौल उठा।
1: गुड।
0: सो हम लोग चल पड़े फौज में नाम लिखवाने, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई सर।
2: और वो जेब भी जवाब दे गई सर।
0: और यहाँ पूछताछ करने पर आपके बारे में मालूम हुआ। लोगों ने कहा सीधे जनरल चौहान की कोठी पर जाओ, सब मुश्किल दूर हो जाएगी। अब अगर आप हमारी मदद कर दें तो।
1: हाँ भाई जरूर जरूर, क्यों नहीं। देखो ये एक फौजी का घर है, देश के लिए जिसके दिल में जज्बा हो उसके लिए हर संभव मदद करेंगे हम। बहू
3: जी,
1: इनका हौसला देख कर ना मुझे राहुल की याद आ गई।
3: पापा,
1: राहुल जब 5 साल का था तब से उसे सनक थी फौजी बनने की।
0: सर फौजी बनकर देश की सेवा करने से बड़ा कोई और काम है क्या?
3: सच, बिल्कुल सच कहा।
1: बहुतों को अजीब लगता है लेकिन एक फौजी ही जानता है कि देश के सम्मान से बड़ा और कोई सम्मान नहीं, और देश की रक्षा करने से बड़ा कोई और काम नहीं।
3: और सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही ये मौका मिलता है, क्यों पापा?
1: यस माय एंजल।
3: पालदार सुनो, देर बहुत हो चुकी है, इनके ठहरने का यही इंतजाम कीजिए। हाँ आप लोग यही ठहर जाइए, सुबह चले जाइएगा।
0: सुबह?
2: जी जी वो तो ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो सुबह ही जाएंगे।
3: आप लोग संकोच मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए।
1: जी सवेरे तुम्हारे जम्मू जाने का इंतजाम कर देंगे, राइट?
0: यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर।
2: उस्ताद, ओ उस्ताद, क्या सोच रहे हो गाल पर हाथ रख के?
0: अजीब लोग होते हैं ये फौजी भी।
2: वो कैसे?
0: दो दो लोग फोटो में टंगे हैं लेकिन तब भी देश देश की रट लगाए हुए हैं। एक बात बोलूं?
2: बोलो।
0: चल यार यहां से भाग चलते हैं।
2: अरे उस्ताद ये क्या बात हुई, क्यों भाग चलें?
0: जाने क्यों कुछ दम सा घुट रहा है इस घर में।
2: उस राजभोग में कोई टोटका तो नहीं था, भागना तो है ही, कोई यही डेरा थोड़ी ना डालना है। रात को भागेंगे, बस दाव लगने ही वाला है।
0: हाँ सो तो है ही।
2: तो फिर भागने की क्या बात थी?
0: मैं तो तेरा मन देख रहा था बे।
2: मेरा मन उस्ताद? मेरा मन तो रोलेक्स घड़ी और माउंट ब्लैंक सिल्वर फाउंटेन पेन पर अटका पड़ा है, और रात में इन्हें बेहोश करके अलमारी भी तोड़ेंगे।
0: माउंट ब्लैंक नहीं बे, मो ब्लैंक कहते हैं।
2: ये अंग्रेजी भी अजीब भाषा है उस्ताद, लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं।
0: अंग्रेजी नहीं है बे, जर्मन है ये।
2: हैं?
0: चुप करो, कोई आ रहा है।
1: भैया क्या तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? आराम कर लो।
0: सर हम आराम से ही हैं।
2: जी जी।
1: सच कहता हूं तुम जैसे यंग लोगों से मिलकर ना बहुत खुशी होती है, फिट हो, जज्बा भी है, पक्का सेलेक्ट हो जाओगे।
0: थैंक यू सर,
2: थैंक यू।
1: तुम्हारा हौसला देखकर मैं खुद जवान हो गया हूं। अच्छा वैसे क्या करते थे तुम लोग वहां, और कहां तक पढ़े लिखे हो?
0: ये सब पूछकर शर्मिंदा मत कीजिए, बीकॉम कर रखा है, बेरोजगार है।
1: क्यों, तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलता है?
2: जी बस यूं समझिए, वो हाथ की सफाई,
0: हाथ अपना... का कोई भी काम, कारीगरी का काम,
2: जी जी जी
0: सब करते हैं सर। बस सर आप जैसे बड़े लोग दुनिया में हैं, बस आप लोगों की कृपा से चल जाता है काम।
1: यंग मैन, बड़ा वो होता है जो देश के लिए जान देने को तैयार हो। इसी देश की आजादी

0: लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जवानी देश के नाम कर दी, कष्ट सहे, जेल गए, धन्य थे वो लोग।
1: जी वो तो है सर,
2: वो है सर।
0: तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। इस मिट्टी का भी एक कर्ज होता है, उस कर्ज को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मेरा बेटा राहुल मेजर था, कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गया था। बहुत बहादुर अफसर था वो, पता नहीं कितनी गोलियां लगी थी, लेकिन तब तक लड़ता रहा जब तक पॉइंट 373 पर तिरंगा नहीं लहरा दिया। देश पर मर मिटने का मौका खास भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है यमन। उसे याद करते ही फौजी बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब देश गुलाम था तब हमारे नौजवान क्रांतिकारी देश पर अपनी जान कुर्बान करना ही जीवन का अर्थ समझते थे। हमारा हर फौजी इस देश और तिरंगे की आन बान शान के लिए कुर्बान होने को तैयार रहता है। एक फौजी का अभिमान उसके देश के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा में निहित है। यह अभिमान उसकी वर्दी, उसकी बहादुरी और देश की रक्षा के लिए हर बलिदान देने की तत्परता में झलकता है। देखना, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तब तुम समझोगे कि फौजी होने का मतलब क्या होता है।
1: जी जी
2: जी सर, जी सर।
0: पालदार
3: जनाब,
0: बिस्तर लगा दिया ना ठीक से?
3: जी जनाब।
0: कोई कष्ट तो नहीं होगा ना तुम्हें?
2: नहीं नहीं
1: नहीं सर, हम तो बहुत आराम से हैं।
2: आभारी।
0: ये लो कुछ रुपए हैं, जम्मू आने जाने और रहने के लिए काम आएंगे।
2: नहीं नहीं सर, इसकी तो
1: अरे सर ठीक है, रख लेते हैं, लौटते समय वापस कर देंगे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू की पोस्टिंग भी आ गई है जम्मू एरिया में, कल ही निकल रही है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है वहीं मुलाकात हो जाए।
4: भाई मुझसे तो मुलाकात होगी ही, मेरी पोस्टिंग वहीं है जहां रिक्रूटमेंट चल रही है।
2: अरे वाह, फिर तो आपसे जरूर मुलाकात होगी।
1: हाँ ये तो।
4: अरे इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो?
2: कल रक्षाबंधन है ना, इसे अपनी छोटी बहन याद आ रही है।
1: ओ जी,
0: तुम में फौजी वाली बात है भाई। फौजी देश के लिए पहले सोचता है और परिवार के लिए बाद में। फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन तुम पर गर्व करेगी जब तुम फौजी की वर्दी में लौटोगे।
2: सर आप नहीं जानते हम कौन हैं।
0: जानता हूं भाई, अच्छी तरह से जानता हूं। तुम भारत माता की संतान हो, स्वाधीन भारत के नौजवान हो। क्या पता आजादी की लड़ाई में तुम्हारे पूर्वजों में से कोई सैनिक भी रहा हो, उनके ही वंशज हो।
4: ये आजादी हम सब के पूर्वजों ने मिलकर पाई थी और इस आजादी को बनाए रखने का काम भी हम सबको मिलकर ही करना होगा, अपने अपने तरीके से। क्यों पापा? अच्छा अब तुम लोग आराम करो, सुबह मिलते हैं।
0: सुबह तक बहुत समय है सोचने के लिए। हा? अब सो जाओ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।
1: सब सो गए हैं, कमरे की अलमारियां तोड़ते हैं, दाढ़ी और पेन हाथ में आई गए हैं, कुछ और सामान उठाते हैं और निकल लेते हैं।
2: रज्जी।
1: हाँ उस्ताद।
2: हम देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, फौजी बनेंगे और देश के लिए लड़ेंगे, चलेगा?
1: फौजी बनेंगे, देश के लिए लड़ेंगे हम?
2: हाँ हम।
1: इस शहर के नामी चोर ठग बावले तो नहीं हो गए? फौज में जाए मेरे दुश्मन।
2: घड़ी पेन रख दे।
1: क्या मतलब? घड़ी पेन तो हमें मिल ही गए, घड़ी तुम रख लेना, पेन मैं रखूंगा।
2: नहीं चाहिए।
1: अच्छा बड़ा साधु बन रहे हो उस्ताद आज तो, मतलब क्या है जरा खुलकर तो कहो।
2: रज्जी
1: हम्म,
2: किसी भी दिन कहीं भी इतना प्रेम और सम्मान मिला

नहीं, जहां भी हम जाते हैं सीधे में कोई बोलता है? नहीं, कभी भी किसी ने इस तरह दिल खोलकर बात की हमसे? नहीं, हमें कुत्ते बिल्ली की तरह दुत्कारा ही है। ये एक फौजी का घर है, लेकिन किसी ने एक बार भी शक नहीं किया, न चोर उचक्का समझा, न वैसा कुछ बोला। अगर हम ये पेन और ये घड़ी लेकर भाग गए, इनकी अलमारियां साफ करके निकल गए, तो कितना छोटा समझे

0: न चोर उचक्का समझा, न वैसा कुछ बोला। अगर हम ये पेन और ये घड़ी लेकर भाग गए, इनकी अलमारियां साफ करके निकल गए, तो कितना छोटा समझेंगे हमें। हम चोर हैं, ठग हैं, बहुत ही नीच हैं, बहुत ही गिरे हुए हैं। पर नीचे गिरने की भी कोई सीमा होनी चाहिए ना रज्जी।
1: उस्ताद, अब तो तुम मुझे डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती वाली कहानी की याद दिला रहे हो। सुल्तान घोड़े की जगह सामान और रुपए चुराने का काम है हमारा। हम चोर हैं, चोर। जो कुछ बोल रहे हो वो हमें शोभा नहीं देता है। फिल्मी कहानी की तरह पलटा मार रहे हो। ऐसा भी होता है क्या, चोर का हृदय परिवर्तन? क्या बकवास है उस्ताद, तुम चाहते क्या हो?
0: पता नहीं रज्जी, पर दिल में कुछ उठा पटक सी चल रही है। रज्जी, चोरी चकारी करते करते हम कितने सेल्फिश और नीच हो गए हैं। इस फौजी के घर में नहीं घुसना चाहिए था हमें।
1: ओ उस्ताद, कहीं तुम्हारा हृदय परिवर्तन तो नहीं हो रहा? सोच, अगर हम तुम चोरी करके दो चार पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारे बूढ़े बाप और छोटे भाई बहनों का क्या होगा? सड़क पर बैठेंगे वो कटोरा लेकर। और मेरा छोटा भाई, उसे ना दवा मिलेगी और ना मिलेगा इलाज, मर जाएगा वो।
0: रज्जी, चल ठीक है, ये ले घड़ी और ये पेन भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
1: उस्ताद, तुम मुझे डरा रहे हो।
0: इन्हें बेचकर अपने भाई के लिए दवा खरीद दे।
1: ठीक है उस्ताद।
0: आप कौन?
2: राहुल की दादी। आवाज सुनकर आ गई। जब भी कोई छोरा आता है तो लगता है राहुल बेटा आ गया अपने दोस्तों के साथ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस समय मेरे राहुल बेटे के कमरे में हो। मेरा लाडला पोता मेजर राहुल, मैं तो देख नहीं सकती, लेकिन इस कमरे में कौन सी चीज कहाँ है सब पता है मुझे। वो दाएं तरफ दीवार पर तुम्हें एक ग्रुप फोटो नजर आ रही है ना?
1: जी
0: आ रही है।
2: हाँ, उसमें लेफ्ट से तीसरा जो फौजी है वो मेरा राहुल है। राहुल, मालूम है, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और कैंपस सिलेक्शन में उसे एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, तो मैंने सबको लड्डू बांटे थे। हाँ, पर वो तो किसी और ही धुन में था। मेरा हाथ पकड़कर बोला, दादी, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें देश सेवा का मौका मिले, खुशी भी मिले, सम्मान भी और पैसा भी, और हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन भी। अब किसी फिरंगी के लिए काम करने से अच्छा है अपनी भारत माँ की सेवा करना। मल्टीनेशनल में तो मैं सिर्फ नौकरी करूंगा, और फौज में नौकरी के साथ देश सेवा। बोल, क्या पसंद है? मैंने बोला, तू क्या चाहता है? तो बोला, फौजी बनना है मुझे। फौजी की नौकरी सिर्फ नौकरी भर नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी देश की सरहदों की रक्षा की, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए शांति हर्ष

0: रक्षा की गारंटी है। फौजी, मिट्टी का कर्ज निभाने वाला जांबाज होता है दादी। तिरंगे की आन पान शान के लिए मर मिटने वाला मतवाला। सुनो, मैं एक फौजी की माँ भी हूँ और दादी भी हूँ। फौजी बनना जरूरत नहीं है रे, जज्बे और सौभाग्य की बात है। वैसे मैंने सब सुन लिया। आज तो सचमुच डाकू खड़क सिंह वाली कहानी हो गई है। हम मैं क्या करूं? मेरा बेटा है ना जनरल चौहान, वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं उसे कहती हूँ कि कैसा इंसान है रे तू, सब पे भरोसा कर लेता है। वो कहता है हिंदुस्तानी फौजी अगर हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पे भरोसा करेगा माँ। कहता है हिंदुस्तान का हर नौजवान राहुल ही तो है। अब इसे पागलपन कहो या बेवकूफी, पर वो मेरी नंदा बेटी सब एक ही मिट्टी के बने हैं, सुधरते ही नहीं। लेकिन इस बार सुधर जाएंगे। वो खड़ी और पेन जो तुमने उठा लिया है ना, उसकी यूनिट ने उसे दिया था। ले जाओ, मेरे पास 15,000 रुपए है, वो भी ला कर देती हूँ। लड़ाई पर जब उसकी यूनिट जा रही थी तो उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। वो मुझे प्यार से स्वीट हार्ट कहता था। उसने कहा था जब लौटूंगा तो स्वीट हार्ट तेरे लिए झुमके लेकर आऊंगा। वो लौटा पर तिरंगे में लिपट कर, चिट्ठी के साथ झुमके आए। चिट्ठी में लिखा था, स्वीट हार्ट, इस झुमके में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, मुझे पता है। मैं फ्रंट एरिया में जा रहा हूँ, पाकिस्तानियों को जरा उनके घर भेज कर आता, और अगर नहीं लौटा तो भी झुमके के साथ अपनी एक मस्त सी तस्वीर मेरी टेबल के ऊपर रख देना, देखता रहूंगा। लव यू स्वीट हार्ट। वो झुमके भी ला कर देती हूँ तुम्हें, खोल के हैं। सुना है आजकल सोना 1,00,000 रुपए तोला बिक रहा है। हाँ, अभी आती हूँ, जरा जरा मेरी लाठी तो पकड़ा दो।
1: जी जी, ये लीजिए। रज्जी, उस्ताद, रज्जी, उस्ताद, ये तो सचमुच की बाबा भारती हो गई रे। अभी के अभी निकल लेते हैं उस्ताद यहां से। हमें चोरी चकारी को अपना धंधा बनाने से पहले एक बार देश के लिए कुछ करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। होता नहीं होता बात की बात थी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए थी। हम पढ़े लिखे भी हैं, हमने आसान रास्ता चुना पैसे कमाने का। उस्ताद, बाबा भारती,
0: ये लो 15,000 रुपए और झुमकी, बाकी जो कुछ भी लेना है ले जाओ। मेरे बेटे और राहुल की वाइफ नंदा को शायद

0: बार समझ में आ जाएगा कि हर कोई राहुल नहीं होता। मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूं कि तुम राहुल की तरह हो ही नहीं सकते। जम्मू में फौज की भर्ती हो रही है, ये तो सच है, लेकिन तुम्हें सिर्फ चोरी करनी थी। जम्मू तो बस बहाना था फंसाने के लिए। जाओ जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगी। जाओ, पर हाँ, एक वादा करके जाओ, किसी को इस घटना के बारे में बताना नहीं। लोग मेरे बेटे जनरल चौहान और नंदा को बेवकूफ कहेंगे। जाओ जाओ यहां से, जाओ जाओ, चले जाओ।
1: क्या बोलते हो उस्ताद, ये बुढ़िया बाबा भारती दादी जेल ना भिजवा दे। मैं तो कह रहा हूं निकल लो।
2: हाँ निकलते हैं, लेकिन सब कुछ यहीं रख दे, रुपए और झुमके भी।
1: कि क्या?
2: हाँ
1: क्या करने की सोच रहे हो उस्ताद?
2: हम जम्मू जा रहे हैं।
3: ये फौजी का घर है। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। पलटू की भूमिका में थे अनुराग अरोड़ा, रज्जी राजीव शर्मा, पालदार कीमती आनंद, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सुरेंद्र सागर, नंदा सुनीता ठुकराल और दादी की भूमिका में थी रश्मि दर। नाटक के लेखक और निर्देशक थे विनोद कुमार।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायवाली केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हुसैन बख्श का गाया राग राजेश्वरी में ख्याल। विलंबित झुमरा ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं दाता हमारी राखो लाज, और द्रुत रूपक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं तिहारे गुण गाऊं। तबले पर संगीतकार हैं रमजान खां और हारमोनियम पर लहरा दिया है मोहम्मद धौलपुरी ने। तो लीजिए सुनिए हुसैन बख्श का गाया राग राजेश्वरी में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप हुसैन बख्श का गाया राग राजेश्वरी में ख्याल सुन रहे थे। तबले पर संगीतकार थे रमजान खां और हारमोनियम पर लहरा दिया था मोहम्मद धौलपुरी ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु साहू का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से, नुसरत फतेह अली खां के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है नुसरत फतेह अली खां ने। सुनना चाहा है दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी। निजामाबाद आंध्र प्रदेश से

0: वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी, रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य और शुभम जैन, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका साहू, मोनिका और पूनम साहू, वेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदावी यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: नवाजता है जो सबको

अल्लाह रखा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने। सुनना चाहा है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। जनता कॉलोनी रायपुर से सैयद एजाज हुसैन, सैयद मेराज हुसैन, जिया, फिजा और ईजा। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। लावण्या साहू, उपासना, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज और प्रभु राम साहू। सिर्री गातापार से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, हरदेव लाल पारावाड़ सिमगा से। बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रैंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल और अनुत डेरे। मुंगेली गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानेश, दीक्षा, संजय, पूजा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म कुली से आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनना चाहा है ग्राम डोंगरिया मलासखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से डॉक्टर मुन्ना लाल पटले माधुरी पटले याचना पटले दीपांशु पटले भाटापारा से नारायण यदु पुनिया यदु राकेश यदु और आरती यदु हथनीपारा भाटापारा से चुआराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे शशिकला अम्बादे पूजा अम्बादे ग्राम फुलजर घटारानी से योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू।

यामिनी मुस्कान और योगिता साहू, मचहा से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, थनै टिकेश और तोमस पटेल, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, चंपा साहू, करण और राहुल साहू, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, शीतलनगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफ राज भागलपुरी, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा, बाजारपारा बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लवकुमार लक्की सिन्हा, कुर्मीपारा बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी अनिश्का और तन्मय गजभिये।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म दिल्ली 6 से जावेद अली और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसन्न जोशी और संगीतकार हैं AR रहमान। सुनना चाहा है भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। देवपुरी रायपुर से हैं ऋषभ शारवा, वेदर शारवा, दिनेश शारवा और मनीषा शारवा। पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। भाटापारा से दानसी रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन। कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेन यादव और योगेश यादव नर्मदा धाम सुरसुली से। कोटा रायपुर से हैं योगिता, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा। रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फिस खान और सादिया खान, आप हैं शांति नगर भाटापारा से। और भाटापारा से ही हैं श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकार मुंधड़ा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां

0: हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

टाक स्टूडियो समय मिलाएंगे मैडम 5:26, 12:13, 14:15 सेकेंड वर्क स्टेशन 1।

आर्टिस्ट माइक नंबर 1 5:27 9:10:11:12 माइक नंबर 2 5:27 16:17:18:19